1.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी।

0: गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने श्री राम चरित मानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 11। मुख्य गायक स्वर है अनुराधा बॉडवाल का। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं, धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले। ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के संभादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण

नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, एपिसोड संख्या थी 11। मुख्य गायक स्वर था अनुराधा पौडवाल का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है, जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती रहती है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, सुरेश वाडकर और साथियों का गाया। आइए सुनते हैं ये भक्ति गीत।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आए सुनते हैं बेटी बेटे फिल्म का गीत। शैलेंद्र के बोल हैं शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में सूरज फिल्म का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत है, बोल है हसरत जयपुरी के।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में होती है कुछ बातें और सुनवाए जाते हैं आपको प्यारे प्यारे से गीत। और आज के इस कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सोनिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ और उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें।

दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, हर जो नई सुबह होती है वो नया मौका लेकर आती है, तो हमें उस मौके को जाने नहीं देना है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना है और साथ ही साथ हमेशा मुस्कुराते रहिए। जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका ये भी होता है कि दूसरों की खुशी में भी खुश होना। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं तो हमारी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। बनाए रखिए उस मुस्कान को और साथ में सुनते रहिए ये प्यारे से गीत।

दोस्तों, जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है उन बातों को स्वीकार करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते, और उन बातों को बदलने की कोशिश करना जिन्हें आप बदल सकते हैं।

दोस्तों, अक्सर हम उन चीज़ों की चिंता में अपना समय गंवा देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लेकिन यदि हम अपना ध्यान अपने प्रयासों पर केंद्रित करें तो सफलता और संतोष दोनों हमारे करीब आ जाते हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारी मेहनत और हमारी सकारात्मक सोच के साथ जब भी हम काम करेंगे तो वह हमें अच्छा ही परिणाम देगी और अपने प्रयासों को कभी भी कम न होने दें।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी के सूर्य नगरी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। दोस्तों हमने कुछ बातें की थी सुबह की और अब हम बात कर लेते हैं नौतपा में हुई कल रात बारिश की। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों नौतपा चल रहा है और आमतौर पर जब भी नौतपा का नाम सुनते हैं और या फिर घर से बाहर निकलते हैं तो तेज धूप, गर्म हवाएं और भीषण गर्मी, उसमें बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कल रात हुई बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया। गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली और सुबह की फिज़ाओं में एक अलग ही ताजगी महसूस हुई। और सुबह का ये जो समय है, बड़ी ही ठंडी और प्यारी हवा चल रही है और इस हवा में आप ज़रूर वॉक कीजिए।

दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे मन की। दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम हमारे मन में ऐसी ऐसी बातों को भरते रहते हैं, और लेकिन हम हमारे मन की जो बातें हैं, जो गलत फहमियाँ हैं किसी दूसरे के प्रति, उसको खाली नहीं करते। तो इस बात की भी ज़रूरत है कि मन की सफाई करते रहना चाहिए, और उसकी वजह से जो भी हमारे नेगेटिव थॉट है वो बाहर निकल जाते हैं। जब तक हम सफाई नहीं करते, वो नेगेटिव थॉट हमारे मन में आते रहते हैं, क्योंकि अगर हम साफ कर लेंगे हमारे मन को, तो एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने मन को साफ कीजिए और साथ ही साथ एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को।

दोस्तों, अभी का जो दौर चल रहा है, उस दौर में हम सभी कहीं ना कहीं बिजी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं। लेकिन कई बार हमारा मन कहता है कि हम अपनी अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करें। उस समय जब भी आपको लगे आपको किसी को अपने दिल की बात, अपने मन की बात बतानी है, तो उसे ज़रूर बताएं जो आपके दिल के करीब हो, जो आपके मन के करीब हो, जैसे आपका कोई दोस्त हो, आपकी भाई या बहन हो, आपका पार्टनर हो, कोई भी हो। अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करें, इससे आपके मन पर किसी तरह का बोझ नहीं होगा और आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे और साथ ही साथ खुश भी रहेंगे।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अच्छे विचार मन को शक्ति देते हैं, अच्छे शब्द रिश्तों को और अच्छे कर्म जीवन को सुंदर बताते हैं। इसी थॉट के साथ आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। मैं थी आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। इस कार्यक्रम से यानी कि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
7: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि

0: ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइन की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
4: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने सीबीएसई की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल

0: थी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong. Clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
4: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. We are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. We are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns.
2: Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the merchant vessel Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to arrive in Vishakhapatnam.

उठो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो गिरकर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं खास पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और मेजबान हिमांशु अवस्थी, हाजिर हूं जहां हर सुबह की पहली किरण अपने साथ एक नई सोच, एक नई दिशा लेकर आती है। हर दिन अपने हमें एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों से सीखने का और जिंदगी को एक नई नज़र से देखने का। तो क्यों ना इस सुबह की शुरुआत करें एक शांत मन के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ और ढेर सारी उम्मीदों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे सफर को खूबसूरत बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ट्रांसमीटर पर हैं पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी। कंट्रोल रूम से आज कार्यक्रम को संभाल रहे हैं चंद्राराम पटेल। और इस पूरे शो को सुरों और तकनीक से सजाने के लिए कंसोल पर मौजूद हैं सोनिया। और एफएम पर हैं हमारे साथ उगम सिंह राजपुरोहित। कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास की और प्रस्तुति सहयोग है राजेश लामरोड का।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार नमस्कार, जहां हम बात करेंगे जिंदगी के उन एहसासों की जो हम सब महसूस करते हैं लेकिन अक्सर कह नहीं पाते। दोस्तों, हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता ज़रूर है, काश मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बदल पाता। आज हम इसी सोच पर बात करेंगे कि लोग अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

दोस्तों, आज हमने चुना है आपके लिए एक ऐसा विषय जो हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता जरूर है, काश मैं अपनी लाइफ में, मैं अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस ला पाता। आज हर इंसान के पास एक ही शिकायत है, समय नहीं मिलता। कोई अपने परिवार को ज़्यादा वक्त देना चाहता है, तो कोई अपने सपनों को, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में हम खुद से कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। और फिर मन में बस एक ही बात आती है, काश मैं थोड़ा रुक कर जी पाता। दोस्तों, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन हम उसे कैसे जीते हैं, यह हमारे हाथ में ज़रूर होता है।

दोस्तों, आज हम एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दूर हैं। मोबाइल ने हमें दुनिया से जोड़ तो दिया है, लेकिन अपनों से बहुत दूर भी कर दिया है। लोग चाहते हैं कि बातचीत एक बार फिर आंखों से हो, ना कि सिर्फ स्क्रीन से। आज हमने अपने कनेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, लेकिन अपनापन कहीं खो सा गया है। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में रिश्ते बहुत अहम होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि काश उन्होंने अपने परिवार के साथ और वक्त बिताया होता। कुछ चाहते हैं कि पुराने दोस्त फिर से वैसे ही हो जाएं, और कुछ बस इतना चाहते हैं कि रिश्तों में फिर से वही सच्चाई लौट आए। दोस्तों, रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए बस थोड़ा सा प्यार ही काफ़ी होता है।

दोस्तों, सबसे बड़ी बात है लोग खुद को बदलना चाहते हैं। कोई अपने गुस्से को काबू करना चाहता है, कोई आलस को, तो कोई अपनी पुरानी आदतों को। लेकिन हर किसी के अंदर एक बेहतर इंसान बनने की चाह छुपी होती है, लेकिन अक्सर हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। दोस्तों, बदलाव सोचने से नहीं आता, शुरुआत करने से आता है। हर इंसान के सपने होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, तो कोई शिक्षक। लेकिन जिम्मेदारियां कई बार सपनों को पीछे छोड़ देती हैं और दिल में बस एक ही आवाज़ रह जाती है, काश काश मैंने कोशिश की होती।

इशारा कर रही है कि वक्त हो गया है प्रादेशिक समाचारों का। समाचारों के बाद हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा, तो कहीं जाइएगा मत।

0: आकाशवाणी का ये जोधपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रम दान। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: इस बीच 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ भारतीय वाणिज्य जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और इसके 3 जून तक स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है। इधर पचपदरा एचपीसीएल रिफाइनरी में बीते महीने संयंत्र में आग के बाद रुकी हुई गतिविधियों और कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रिफाइनरी से आगामी 1 जून से कमीशनिंग गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी भी अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़ों के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों को लगे टीकों का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि

0: इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई की टेली परामर्श हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी है। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। 12वीं का परिणाम 71.65% और 10वीं कक्षा का परिणाम 64.69% रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन तथा जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रभारी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत कल जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में श्रमदान किया। उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए और इको ट्रेल का लोकार्पण किया। इधर जल भवन परिसर में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्मिकों ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए और जल के सदुपयोग का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। बालोतरा के रेवाड़ा जैतमाल अमृत सरोवर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने श्रमदान किया। चित्तौड़गढ़ में प्रभारी मंत्री डॉ मंजू बाघमार ने जिलाधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई हिस्सों में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर सहित 8 शहरों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच जयपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में वर्षा हुई। झुंझुनू जिले के कई इलाकों में अंधड़ आया। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार छा गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में देर शाम मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी। धौलपुर, भरतपुर, दौसा सहित पूर्वी जिलों में भी मौसम के बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली। अजमेर में दिनभर तेज धूप के बाद देर शाम मौसम ने करवट बदली और आंधी बिजली की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। बेमौसम की बरसात से जिले में कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने और बिजली के पोल उखड़ने की खबर है। हाड़ौती क्षेत्र में भी आंधी बारिश की गतिविधियां हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। नागौर और आसपास के इलाकों में भी देर रात तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ निजात दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई।
1: नागौर जिले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत दी। वहीं जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को देर रात चली तेज आंधी और बरसात से राहत मिली। बारिश के दौरान शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। जिले के असावरी, तौसर सहित जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नींबू के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने

0: बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी और सरहदी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के मौजूदा संस्करण में राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का फाइनल कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले दो दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: दोस्तों, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार में। मैं हूं आपका अपना दोस्त हिमांशु अवस्थी और एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ इसी खूबसूरत सुबह को और भी खास बनाने के लिए। तो फिर से शुरुआत करते हैं कुछ नए ख्यालों, नई बातों और ढेर सारी जानकारियों के साथ।

दोस्तों, वक्त है इतिहास के पन्नों को पलटने का, जहां हर दिन आपको रूबरू करवाते हैं उन घटनाओं से जिन्होंने समय की धारा को एक नई दिशा दी। आज तारीख है 30 मई और इतिहास के पन्नों में दिन कई ऐसी घटनाओं का गवाह बना है जिन्होंने पत्रकारिता, साहित्य, खेल और देश को एक नई पहचान और नई ऊंचाइयां दी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात उस ऐतिहासिक कदम की जिसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। 30 मई 1826 पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड शुरू किया। उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। यही कारण है कि आज 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कलम की ताकत समाज को बदल सकती है। अब बढ़ते हैं साल 1919 की ओर। जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस दर्द और अन्याय के विरोध में 30 मई 1919 को महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि सर को ठुकरा दिया था। उन्होंने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था, ये सम्मान अब शर्म का प्रतीक बन चुका है और मैं अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपमान और पीड़ा सह रहे हैं। ये केवल एक उपाधि लौटाना नहीं था दोस्तों, बल्कि देश के सम्मान और आत्मसम्मान के लिए उठाई गई एक बुलंद आवाज थी। अब बढ़ते हैं 30 मई 1922 की ओर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। यह स्मारक अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की याद में

बनाया गया था, जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष किया था। दोस्तों, अब बात भारत के उस खूबसूरत राज्य की जो अपनी संस्कृति, समुद्र तटों और संगीत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वह भारत का 26वां राज्य बना। गोवा केवल पर्यटन की पहचान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और पुर्तगाली विरासत का एक अनोखा संगम भी है। और अब खेल जगत से एक गौरवपूर्ण उपलब्धि। 30 मई 2012 भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। तो दोस्तों, 30 मई का दिन हमें पत्रकारिता की शुरुआत, देशभक्ति की आवाज, सम्मान और संघर्ष की कहानी और उपलब्धियों की चमक, सब कुछ एक साथ याद दिलाता है।

दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हर सब्जी में फिट हो जाती है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी फेवरेट है और जिसे देखकर समोसा भी मुस्कुरा उठता है। जी हाँ दोस्तों, आज यानी 30 मई को मनाया जाता है विश्व आलू दिवस। अब सोचिए, अगर आलू ना होता तो समोसा अधूरा, पराठा फीका, चिप्स उदास और मिक्स वेज सच में सिर्फ मिक्स ही रह जाती। दोस्तों, आलू सिर्फ स्वाद का हीरो नहीं बल्कि इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। आलू की शुरुआत हुई थी दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से, जहां इसे हजारों साल पहले उगाया जाता था। फिर 16वीं शताब्दी में आलू यूरोप पहुंचा और देखते ही देखते पूरी दुनिया का फूड स्टार बन गया। और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस घोषित किया, जिसका पहला आयोजन 2024 में हुआ था। हर सब्जी का साथी आलू सब पर भारी। अब जरा इसकी खूबियां भी जान लीजिए। आलू दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है, चावल और गेहूं के बाद। इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर जैसे भरपूर आलू सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। और सुनिए, आलू में लगभग 75 से 80% पानी होता है, यानी स्वाद के साथ साथ हाइड्रेशन भी। अब अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। पहले नंबर पर चीन आता है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश आलू उत्पादन के लिए बड़े केंद्र हैं। और दोस्तों, आलू सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बल्कि लाखों किसानों की आजीविका का सहारा भी है। इसकी खेती में कम पानी और कम जमीन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल फसल मानी जाती है। आलू की खेती के लिए ठंडा मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। लगभग 15 से 25 डिग्री तापमान और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। तो दोस्तों, आज विश्व आलू दिवस पर जब भी आप समोसा, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स या आलू का पराठा खाएं, तो इस साधारण से दिखने वाले लेकिन कमाल के सुपरस्टार को एक छोटी सी मुस्कान जरूर दीजिएगा, क्योंकि सच ही कहा गया है कि आलू है तो स्वाद है।

दोस्तों आज है 30 मई और ये दिन भारत में हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का बेहद खास दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तंड मातंड प्रकाशित हुआ था। इसलिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक समाचार पत्र की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता यानी आज के कोलकाता से की थी। वो इसके संपादक, प्रकाशक और संचालक सब कुछ स्वयं ही थे। उत्तंड मातंड एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। इसके पहले अंक की लगभग 500 प्रतियां छपी थीं। उस समय अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी भाषा के समाचार पत्र तो मौजूद थे, लेकिन हिंदी में कोई समाचार पत्र नहीं था। ऐसे दौर में हिंदी अखबार निकालना एक साहसिक कदम था। दोस्तों, पंडित जुगल किशोर शुक्ल मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे और पेशे से वकील थे। उन्होंने

जनता को केवल खबरों का माध्यम नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की आवाज़ बनाने का प्रयास किया। लेकिन उस समय चुनौतियाँ बहुत सी थीं। हिंदी भाषी पाठकों की संख्या बहुत कम थी, डाक खर्च भी बहुत अधिक था और ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती थी। आर्थिक परेशानियों के कारण सिर्फ 79 अंक प्रकाशित होने के बाद 4 दिसंबर 1826 को उतंट मातंट को बंद करना पड़ा। इसके अंतिम अंक में जुगल किशोर ने भावुक शब्दों में लिखा था कि हिंदी पत्रकारिता का सूर्य अस्त हुआ है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए यह नई रोशनी छोड़ गया है। आगे चलकर हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां देने में गणेश शंकर विद्यार्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हसरत मोहानी जैसे महान पत्रकारों और साहित्यकारों का बड़ा योगदान रहा। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा शुरू किया गया प्रताप समाचार पत्र स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत आवाज बना। अंग्रेज सरकार कई पत्रिकाओं से इतना डर गई थी कि उन्हें जब्त कर लिया। तो दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी शुरुआत भी इतिहास बना सकती है। एक अखबार, एक कलम और सच कहने का साहस समाज को बदलने की ताकत रखता है। आज हम उन सभी पत्रकारों को सलाम करते हैं जो हर दिन सच को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं।

दोस्तों वक्त है आज की काम की बात को जानने का। आज की काम की बात उन लोगों के लिए है जो घर के बाहर पान की दुकान तक जाने के लिए भी बाइक निकाल लेते हैं। सिर्फ आधा किलोमीटर जाना हो फिर भी हेलमेट लगाओ, चाबी ढूंढो।

0: बाइक स्टार्ट करो और पहुंचते ही पता चलता है अरे पैदल जल्दी पहुंच जाते। दोस्तों अगर दूरी बहुत कम हो तो कोशिश कीजिए कि बाइक की बजाय थोड़ा पैदल चलें, क्योंकि आजकल पेट्रोल के दाम देखकर बाइक भी शायद यही सोचती होगी भाई थोड़ा मुझे भी आराम दे दो। और दूसरा सबसे बड़ा आपको फायदा होगा कि आपका शरीर फिट रहेगा। रोज थोड़ा पैदल चलने से शरीर एक्टिव रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है और मन भी फ्रेश महसूस करता है। सिर्फ 15 से 20 मिनट पैदल चलना दिल दिमाग और सेहत तीनों के लिए अच्छा माना जाता है। और हाँ दोस्तों अगर काम पास में हो तो कभी कभी बाइक को भी छुट्टी दीजिए और अपने कदमों को थोड़ा काम करने दीजिए, क्या पता छोटी सी ये आदत आपकी सेहत और जेब दोनों को बचा ले। ये थी आज की काम की बात, तो मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए।
1: देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

तेरे से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

दोस्तों वक्त है शनिवार की रेसिपी को जानने का। और दोस्तों गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में मन करता है कुछ ऐसा मिल जाए जो ठंडक भी दे, ताजगी भी दे और बनाने में ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। तो आज हम लेकर आए हैं एकदम आसान, एकदम रंगीन और एकदम रिफ्रेशिंग रेसिपी, तरबूज मिंट कूलर। दोस्तों तरबूज गर्मियों का सुपरस्टार फल माना जाता है, इसे देखते ही मन खुश हो जाता है। और अगर उसके साथ पुदीने की ताजगी मिल जाए तो समझ लीजिए गर्मी की छुट्टी तय है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इस शानदार ड्रिंक को बनाने में क्या क्या चाहिए। दो कप ठंडा और कटा हुआ तरबूज, 8 से 10 ताजा पुदीना की पत्तियां, आधा नींबू, थोड़ा सा काला नमक, कुछ बर्फ के टुकड़े और अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद हो तो थोड़ा शहद या चीनी। अब शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मिक्सर जार लीजिए, उसमें डालिए तरबूज के टुकड़े। अब उसमें पुदीने की पत्तियां डालिए जो इस ड्रिंक को देंगे एकदम ठंडी ठंडी फ्रेशनेस। फिर डालिए थोड़ा नींबू रस और चुटकी भर काला नमक। अब बर्फ डालकर मिक्सर को चलाइए और बस 1 मिनट में तैयार हो जाएगा आपका सुपर कूल, सुपर फ्रेश तरबूज मिंट कूलर। अब इसे ग्लास में डालिए, ऊपर से एक पुदीना की पत्ती को सजाइए और अगर थोड़ा होटल वाला फील चाहिए तो ग्लास के किनारे पर छोटा सा तरबूज का पीस भी लगा दीजिए। दोस्तों इस ड्रिंक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक स्वादिष्ट ही नहीं है बल्कि शरीर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तरबूज में पानी भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। पुदीना पेट को ठंडक देता है और ताजगी महसूस कराता है। नींबू स्वाद बढ़ाने के साथ साथ गर्मी में शरीर को राहत देता है। और सबसे मज़ेदार बात कि इसे बनाने में गैस जलाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कम मेहनत, कम समय और पूरा मज़ा। अब ज़रा सोचिए, दोपहर की गर्मी हो, कूलर चल रहा हो और हाथ में ये ठंडा ठंडा तरबूज मिंट कूलर हो तो फिर गर्मी भी थोड़ा शर्माने लगती है। तो दोस्तों इस शनिवार अपने घर पर ज़रूर बनाइए ये आसान, हेल्थी और मज़ेदार तरबूज मिंट कूलर। बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़े भी कह उठेंगे, वाह गर्मी में तो यही चाहिए था। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, ठंडा पीजिए और गर्मी से दूर रहिए।

दोस्तों, हर हफ्ते दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि आने वाले समय का संकेत बन जाती हैं। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खास बात जुड़ी है भारत की बारिश, खेती, गर्मी और करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। IMD यानी भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल मानसून कमज़ोर पड़ सकता है और इसकी बड़ी वजह बन सकता है एलनीनो। अगर ये अनुमान सही साबित हुआ तो इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खेती, महंगाई, पानी और बिजली तक हर चीज़ पर इसका असर दिखाई दे सकता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर एलनीनो होता क्या है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो जब प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है तब दुनिया भर के मौसम पर इसका असर पड़ता है। भारत में इसका सबसे बड़ा असर मानसून पर दिखाई देता है। बारिश कम हो जाती है।

गर्मी बढ़ जाती है और सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। भारत के लिए मानसून सिर्फ बारिश नहीं है दोस्तों, देश की लगभग 60% खेती मानसून पर निर्भर करती है। अगर बारिश कम हुई तो फसलों पर असर पड़ेगा, सब्जियों और अनाज की कीमतें बढ़ सकती हैं, पानी की कमी हो सकती है और बिजली संकट भी बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई और अगस्त में एलनीनो का असर ज़्यादातर दिखाई दे सकता है, यानी वही समय जब किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत बारिश की होती है। इतना ही नहीं, IMD ने यह भी कहा है कि इस साल हीट वेव यानी लू के मामले भी बढ़ सकते हैं, कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। लेकिन एक उम्मीद भी है, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इंडियन ओशियन डिपोल जैसी दूसरी मौसमीय परिस्थितियां एलनीनो के असर को थोड़ा कम कर सकती हैं, यानी तस्वीर अभी तक तय नहीं है। फिलहाल पूरा देश मानसून का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भारत में बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि खेतों से लेकर बाजार तक और आम आदमी की जिंदगी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक सब कुछ तय करती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में बादल राहत लेकर आते हैं या फिर एलनीनो भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ा करता है।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। समय हो गया कार्यक्रम लोक संगीत का। लोक संगीत में आइए सुनते हैं ओम प्रकाश दवामी का गाया ये लोकगीत।

ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे प्रकाश वाणी की आवाज़ में। इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम और आइए आप सुनते हैं तारा राम डांगी का गाया ये लोकगीत।

इस लोकगीत के साथ आज का लोक संगीत का कार्यक्रम बस यहीं तक। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनते हैं गैर फिल्मी नगमे और कार्यक्रम का पहला नगमा है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे अर्णव चक्रवर्ती की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अगला गीत बाबुल सुप्रियो का गाया।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत।

या ना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए अब सुनते हैं ब्लैकमेल, इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया कुदरत फिल्म का गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे चुपके चुपके फिल्म से। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं आराधना फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।
1: ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्तर देना। डन
2: कैन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अभी आपने सुना अपना देश फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज़ें दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आपने सुना फिल्म हसीना मान जाएगी का यह लोकप्रिय युगल गीत बेखुदी में सनम। गीत को अपनी जादुई आवाज़ों से सजाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। भावपूर्ण बोल लिखे हैं अख्तर रोमानी ने। मधुर धुनों से स्वरबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: टन गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कल चौदहवीं की रात थी, कल चौदहवीं

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, या आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। वे आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वे कल नई दिल्ली में म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। उनका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति यू मिन आंग की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और अधिक मजबूत तथा प्रगाढ़ होने की आशा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी

0: व्यवस्था प्रगाढ़ होने की आशा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में विशेष स्थान रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस होंगे। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल चौहान को आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदाई समारोह में जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। चार दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में सरहदी जिले जैसलमेर में रिचार्ज शॉफ्ट संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। इनके जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाई गई। सवाईमाधोपुर के बाडोलास में गंभीर नदी पर बने एनीकट पर जल पूजन और पीपल पूजन का आयोजन हुआ। इसी तरह पाली जिले के सादड़ी में ऐतिहासिक प्रतापगढ़ बावड़ी पर भी कार्यक्रम रखा गया। जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने डायवर्जन चैनल का लोकार्पण किया। इस दौरान निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह पीएसबीए के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएसबीए देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। कोटा जिले में पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का प्रकोप दिखाई देने पर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। नगर निगम की बंधा गौशाला और दो निजी गौशालाओं की 11 गायों में इस रोग की पुष्टि हुई है। संक्रमित गायों को आइसोलेट किया गया है। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर डॉ खुशाल सोलंकी ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित पशु का दूध पीने और इनके संपर्क में आने वालों में भी इनकी चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम गठित कर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ। 29 जून तक चलने वाले अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। पाली में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज 30 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कल शाम मौसम में अचानक बदलाव के बाद उत्तर पूर्वी जिलों में तेज अंधड़, बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। राजधानी जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने दो दिनों तक प्रदेश में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भैया आपा खेती बाड़ी रा काम काज कर रहे हाँ, इनके साथ साथ आपा भात भातरा जी का फल है, इनकी पैदावार भी अपने बाड़िया है, खेत है, बुटे आप लेवा हाँ, सब्जियां पैदावार भी आपा लोगो ही लेवा हाँ। हमें बात यू आवे है कि भाई सब्जियां है, फलदार वृक्ष है, इनर महीने अपने भात भातरा जी का कीड़ा ने मारने वास्ते कई जी की दवाएं है, इनर अपने छिड़काव करना पड़े। जरूरत बात रही है कि अबारी बगत महीने आप ज्यादा से ज्यादा जी की आपा आयुर्वेदिक जी की औषधियां है ए भी आपा बनाया करा और इनर जी को छिड़काव है इन रोकड़ा माते और सब्जियां माते करा आपा और जिका भी कीड़ा है रोग है उनने आपा बगाया करा। आज आपने जानकारी दी रहा भाई नीम आधारित बायो पेस्टिसाइड आपा किन तरह से बना सका। किसान भाई नीम आधारित बायो पेस्टिसाइड्स जी को है और समन्वित कीट प्रबंधन मायने फसल ने कीट व्याधियां से बचाने वास्ते एक बहुत ही उपयुक्त महत्वपूर्ण बायो पेस्टिसाइड हुआ करे। इनारे उपयोग से हंगड़ो मोटी बात आ है कि जिको अपनो पर्यावरण है इन्हें किनी तरह जिको नुकसान है और नहीं हुआ करे और फसल माते जी का रस चूसने वाला जीव आप बात करा कीट है जो सफेद मक्खी है इनारो प्रभावी नियंत्रण जो को है वो आप कर सका। और आप बात करा कि भाई आजकल समय भी आई आवश्यकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा नीम आधारित जिको बायो पेस्टिसाइड जिका उत्पाद है वे आप लेवा और सस्तो भी पड़े। इनरे साथे साथे किसान भाई नीम आधारित बायो पेस्टिसाइड जिको उत्पाद है वो आप खेत में ही कर सके घरे खुद बना सके ज्यादा से ज्यादा अपने नीम पेस्टिसाइड रो अपने प्रयोग अपने करना चाहिए। हम वो पहली बात आवे कि भाई नीम रिज की निमोलिया है एम आप जीव आप पाकि उन वक्त आप कहीं करा के जी का फल आप बेड़ा करना और एक हुती जी की चादर है चादर आप क्या वह ले लो काम में या पचे कहीं करा आप जी की मच्छरदानी है वह आप ले ला और जिका फलू लदियोड़ा जी का नीम रहे उनर नीचे आपा कई करा बिचार दा पच आपा कई करा नीम रे जी की डालियां है टहनियां है उनने आपा जोरदार हिलावा हिलावा जन कई हुए कि जिन टाइम ए गुट्टा पाक जाए सा तो पक्योड़ा जी का ए गुट्टा है ए आपने इन चादर मात गिर जाई और आनी फड़ार महीनू आपा कई करा के जिको बीज है वो आपा नेरो करना और जिका भेड़ा करिया जी आप निमोलिया है भेड़ी कर ली वे आप कहीं करा कि पानी री भरूड़ी जी की बाल्टी है उन महीने आप डाला और बाद महीने आप कहीं करा हाथों मसल मसल जिका गुद्दे जिका बीज है वे नेरा करना। और किसान भाई आपने जानकारी दे वहां के भाई नीम आधारित बायो पेस्टिसाइड आप किन तरह से बना सका हमें सुनाओ आपने बढ़िया सी फूटरी सी गीत रचना।

किसान भाई आपा जानकारी ले रहा था कि भाई आपा नीम आधारित बायो पेस्टिसाइड की कर बना सका। जब आप बात बताई कि बड़ी आपा बीज बेड़ा कर लिया, हम आपा कहीं करा गए जी का बीज है जिन्हें आपा गिरी क्या वहाँ उन आपा बड़ी आपा ने हुका ला हुका परान बड़ी आप बेड़ा करना और बीजा ने चादर माते बढ़िया बिछा दापा और सातू ले आठ दिन तक आपा कहीं करा वन बीजा ने आपा बढ़िया हुकामा और पचे आपने बढ़िया जीव हवादार जी की बोरिया है उन्हें महीने भरपरा आपा भेड़ा करना। बीजा ने ऊपर जी का छिलका है वह छिलका भी आपा हटा ला और माइली जी की गिरी है निकालना। पचे गिरी ने बढ़िया पीस परान आपा बढ़िया एकत्रित कर परान बढ़िया मयो पाउडर जी को है वो आपा बना ला। हम वो आपने पाउडर बन जा इन पाउडर ने आपा कहीं करा पानी महीने गोल परान आपा भिजोदा रात भर रखा और बिन बाद महीने जी को आपा छिड़काव वास्ते जी को वो आप काम में ले सका और भात भातरी जी की अपन जीव जैसे मान लो कोई वृक्ष है फलदार वृक्ष है और भी दूजी कोई सब्जियां बीजी है अपने लियोड़ी है तो उन्हारे माते आप इंड्रो जी को छिड़काव है वो आप करा तो जिनसे कहीं वे के भात भातरा जी का कीट है वे मर्जा इंड साथे साथे पौधा रमाइने सब्जियां रमाइने जी की व्याधियां है व्याधियां खत्म हो जा और जो सफेद मक्खी जी को नियंत्रण है वो करने वास्ते नीम आधारित जी को बायो पेस्टिसाइड है बहुत कारगर होया करे। दो किलोग्राम जी को पाउडर वे विने लंगे टंगे आपा 10 लीटर पानी रमाइने गोल बनाना आपा बढ़िया भिगोला इन तरह आपने मान लो हल्लो छिड़काव करनो वे तो ओ जी को अनुपात है इन आप आगे भी इन तरह से दोहरा सका। किसान भैया आ ही जानकारी की भाई आप नीम आधारित बायो पेस्टिसाइड किन तरह से बना सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है दिनेश राणे जाने शीख गिराओ राम राम।

ये अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: रहने दो अपनी जुल्फों को चेहरे पर यूं ही,
1: ये चांद बादलों में ज्यादा हंसी लगता है।
0: नारीवादी का सुनने वाली सभी सखियों को अपनी सखी मकसूदन और
1: नेहा का प्यार
0: प्यार
1: भरा
0: भरा नमस्कार।
1: नमस्कार। सखियों, आज बात होगी उन लहराती जुल्फों की जिन पर शायरों ने गजलें लिखी हैं।
0: और गीतकारों ने बेहतरीन नगमों से सजाया है।

0: कभी गौर किया है? कुछ जुल्फें सिर्फ चेहरे पर नहीं बिखरती, वो किसी की यादों में भी उलझ जाती हैं। इन काली घटाओं में जाने कैसा जादू होता है कि एक लट चेहरे पर आ जाए तो सामने वाला अपना दिल हार बैठे।
1: जुल्फें जो कभी बारिश की बूंदों सी नर्म लगती है, तो कभी रात की तरह गहरी। इनकी हर लहर में एक कहानी छुपी होती है, मोहब्बत की, इंतजार की और उन अनकहे एहसासों की जो लफ्जों से नहीं सिर्फ नजरों से समझे जाते हैं।
0: कभी खुलकर उड़ती हैं तो लगता है जैसे हवाओं की भी आज़ादी इनको मिल गई हो, और जब कोई इन्हें कानों के पीछे धीरे से सजा ले तो वो एक अदा हजारों शायरियों पर भारी पड़ जाती है।
1: क्योंकि जुल्फें सिर्फ बाल नहीं होती, ये किसी की मासूमियत का चेहरा होती है, किसी की खूबसूरती का राज और किसी की धड़कनों का सुकून। सखियों, आज नारी वाटिका में बात होगी इन्हीं खूबसूरत, लहराती और दिल को छू लेने वाली जुल्फों की।

0: कभी किसी की आंखों पर शायरी लिखी गई तो कभी किसी की मुस्कान पर, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी चीज ने शायरों को दीवाना बनाया है तो वो है जुल्फें।
1: जी हाँ, ये काली घटाओं जैसी लहराती जुल्फें जिन्होंने ना जाने कितने शायरों की कलम को मोहब्बत से भर दिया। किसी ने इन्हें रात कहा तो किसी ने सावन की घटा।
0: शायर कहते हैं, तेरी जुल्फों की छांव में ऐसा सुकून मिला जैसे तपते रेगिस्तान को पहली बारिश मिल गई हो।
1: और कभी इन्हीं जुल्फों को उलझन भी कहा गया। और इस पे एक शेर याद आ रहा है नेहा, तेरी जुल्फों के पेचो खम नहीं खुलते, जिंदगी भी तेरी तरह उलझी हुई लगती है।
0: क्या बात है, पुराने शायरों ने तो जुल्फों को काली घटाएं कहकर पुकारा, क्योंकि जब खुले बाल हवा में लहराते थे तो सचमुच ऐसा लगता था मानो सावन की घटाएं आसमान से उतर आई हों।
1: और शायद इसीलिए फिल्मों के जो गीत हैं उन्हें बार बार जुल्फ

0: का जिक्र हुआ है, जैसे ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, या फिर तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी।
1: क्या बात है। जुल्फे सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, ये एहसास होती है, कभी प्यार का, कभी इंतजार का, तो कभी किसी की यादों का।
0: और शायरों की दुनिया में ये जुल्फें आज भी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी जाती है।
1: आज जब हवा आपके बालों को छुए, तो एक पल के लिए उन शायरों को जरूर याद कीजिए।
0: जिन्होंने जुल्फों पे पूरी कायनात देख ली थी।

0: सखियों, बाल सिर्फ चेहरे का हिस्सा नहीं होते, इनके साथ जुड़ी होती हैं शरारतें, तारीफें, इमोशंस और कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी भी।
1: बिल्कुल। अब देखिए ना, कुछ लोगों की जुल्फें इतनी शानदार होती है कि उन्हें देखकर हवाएं भी रुक जाती है।
0: और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके बचपन में हेयर कट को देखकर लगता है कि नाई ने कोई बदला ले लिया है।
1: हाँ नेहा, मुझे लगता है हर इंसान के बालों से जुड़ी कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। किसी को तो पहली बार जब कॉलेज में जाते हैं तो बालों की तारीफ मिलती है, तो किसी की हेयर स्टाइल का मजाक भी उड़ाया जाता है।
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दादाजी ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था घर में कि ठीक है ना, कौन जाएगा बाहर, पैसे देंगे? नहीं नहीं घर पे ही कटिंग कर सकता हूँ, मैं छोटा सा बच्चा है, कर दूंगा। और फिर पता चला कि ये क्या हो गया, ऊपर नीचे सारे बाल कट गए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नाराज होकर खुद ही अपने बाल काट लिए हैं।
1: ओह, लगता है ये कहानी आपकी है।
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया था। उसे लगा कि वो फिल्म स्टार लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी, स्टाइलिश लगेगी, और अगले दिन जब वो स्कूल में गई तो उसे सब झाड़ू कट बुलाने लग गए।
1: सच है, जब कोई पहली बार हमारे बालों की तारीफ करता है तो वह भी यादगार बन जाता है।
0: और इसी तरह जुल्फ की तारीफ एक नए रिश्ते की शुरुआत भी बन जाती है।

0: हिंदी भाषा में बाल केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि कई कहावतों और मुहावरों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल नेहा, इससे जुड़ी कहावतें हमारी भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाती है और इसके जरिए से अनुभव, बुद्धिमानी, सावधानी और जीवन के अलग-अलग मोड़ को आसान तरीके से बयां किया जा सकता है।
0: तो आइए आज जानते हैं बालों से जुड़ी कुछ खास कहावतों और मुहावरों के बारे में। तो शुरू करते हैं मुहावरे बाल की खाल निकालना से।
1: जैसे कोई व्यक्ति हर बात पे कमी निकालता रहे तो कहते हैं ना कि वो बाल की खाल निकाल रहा है, यानी
0: बिल्कुल।
1: जांच पड़ताल बहुत कर रहा है।
0: और ऐसे भी बोलते हैं ना कि बाल बाल बच गए।
1: और इसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन बहुत कम अंतर से उससे बच गए।
0: हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मुसीबत आ गई है और हमने बोल दिया कि बाल भी बाका नहीं हुआ हमारा तो।
1: यानी कि बहुत कठिन मुसीबत है, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ उसके अंदर।
0: और कभी कभी हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं ना कि बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए
1: हाँ,
0: हैं।
1: वो ये कहना चाह रहे हैं कि उम्र नहीं बढ़ी है, साथ में हमें अनुभव भी मिला है जीवन से, इसलिए तो कहते हैं ना कि हमने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं।
0: सही कहा, हमारी भाषा में ऐसे मुहावरे और कहावतों से और भी रोचक बना देते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नेहा, अक्सर कहा जाता है कि बाल सिर्फ खूबसूरती का हिस्सा नहीं बल्कि भावनाओं और जीवन के अनुभवों का भी प्रतीक है, इसके बारे में तुम क्या कहोगी?
2: मकसूदन, हमारे समाज और साहित्य में बालों को कई भावनाओं और स्थितियों से जोड़कर दिखाया है। बिखरे बाल कभी चिंता, व्यस्तता या गहरे विचारों का संकेत माने जाते हैं, तो सजे सवरे बाल आत्मविश्वास, प्रसन्नता और उत्साह का प्रतीक भी होते हैं।
1: और जो सफेद बाल है उसका भी तो विशेष महत्व होता है।
2: मकसदन, सफेद बाल अनुभव, परिपक्वता और जीवन से मिली सीख के प्रतीक माने जाते हैं। इसी तरह ना घने और मजबूत बाल अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा का संकेत भी समझे जाते हैं।
1: इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि मेहनत करते करते बाल सफेद हो गए।
2: सही कहा, यहाँ बाल मेहनत, संघर्ष और जीवन के अनुभवों का प्रतीक बन जाते हैं। यानी बालों के माध्यम से खुशी, चिंता, प्रेम, संघर्ष और अनुभव जैसी कई भावनाओं को समझा जा सकता है।
1: सखियों, बाल हमारे जीवन के कई रंगों के प्रतीक है, तो उनकी देखभाल कीजिए और अपनी मुस्कान की तरह उन्हें भी हमेशा संवार के रखिए।

0: सखियों, बालों का हमारे रिश्तों से भी गहरा संबंध माना जाता है।
1: बिल्कुल सखियों, बाल केवल सौंदर्य का हिस्सा नहीं बल्कि कई रिश्तों की मधुर यादों से भी जुड़े होते हैं। माँ अपने बच्चों के बाल संवारते हुए ममता लुटाती है।
0: और बहन, एक जो बहन है अपनी छोटी बहन की जब चोटी बनाती है तो उसमें कितना स्नेह जताती है। और सखियों, जो बाल है उनके भी अलग अलग रिश्ते होते हैं।
1: कैसे, सखियों के बीच भी तो बालों का एक अलग ही रिश्ता होता है ना,
0: बिल्कुल।
1: जैसे तुम्हारा और मेरा। और इसी तरीके के रिश्तों में इस तरह से बनता है ये रिश्ता कि एक दूसरे के बाल गूंथती हैं, फूल सजाती हैं और
0: और
1: घंटों
0: घंटों
1: बातें
0: बातें
1: करती
0: करती है।
1: हैं।
0: बिल्कुल। और हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रसंगों में तो बालों का उल्लेख मिलता है, जैसे राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं में श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, और लोकगीत और भक्ति काव्य में भी कई बार उसके बारे में जानकारी मिलती है।
1: बिल्कुल, जैसे कृष्ण राधा के केशों में फूल सजाते हैं और उनकी वेणी की प्रशंसा करते हैं, उसी तरीके से प्रेम, सम्मान और अपनत्व का सुंदर प्रतीक माना जाता है बालों
0: यानी
1: को।
0: माँ की ममता, बहन का स्नेह और

0: सखी की मित्रता और राधा कृष्ण का प्रेम सभी कहीं ना कहीं बालों और उनके श्रृंगार से जुड़ी हुई दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल मैक्सुदन, इसलिए बाल केवल हमारी सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे रिश्तों और उनकी यादों और मिठास को भी संजोए रखते हैं।
0: तो सखियों, बालों की हर लट में किसी ना किसी रिश्ते की कहानी छिपी होती है। इन्हें संवारिए और अपने रिश्तों की तरह सहेज कर रखिए।

0: सखियों, चेहरे की खूबसूरती में सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज़ का होता है तो वो है हमारे बाल। लेकिन आज की भागदौड़, धूल, प्रदूषण और गलत लाइफस्टाइल की वजह से ना हमारे बाल समय से पहले रूखे, बेजान और कमज़ोर होते जा रहे हैं।
1: फिर शुरू होता है परेशानियों का सिलसिला, हेयर फॉल, डैंड्रफ, दो मुहे बाल, बालों का पतला होना। लेकिन अगर थोड़ी सी भी देखभाल की जाए ना नेहा, तो बाल फिर से चमकदार और स्ट्रांग बन सकते हैं।
0: बालों को पोषण देने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार तेल जरूर लगाइए। नारियल, बादाम या आंवले का तेल, इन तीनों में से, या फिर कुछ आपको ऐसा लगता है कि मिक्स करके आप बना सकते हैं घर में, तो वो बना के आप बालों की जड़ों में लगाएं, तो उससे बाल की जड़ें जो हैं स्ट्रांग हो जाएंगी। और ये एक चीज़ याद रखनी है कि तेल सिर्फ लगाना नहीं है, हल्के हाथों से मसाज करना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। और साथ में कई लोग जो होते हैं ना, रोज शैम्पू करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शैम्पू भी है ना, वो नेचुरल जो ऑयल होता है ना बालों का, उसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हफ्ते में 2-3 बार ही शैम्पू काफ़ी होता है।
0: ये बात तो बहुत ज़रूरी है जानकारी के लिए। सिर्फ बाहर से नहीं, बालों को अंदर से भी पोषण चाहिए।
1: खाने
0: हरी
1: पीने की बात कर रही हो।
0: हरी
1: सही है।
0: सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स और भरपूर पानी बालों को हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं। और तुमने वो जो कहा था ना कि नेचुरल ऑयल चला जाता है, तो उसके लिए ये ध्यान रखना है कि बालों को कभी भी ऐसा नहीं हो कि ऑयलिंग नहीं किए और डायरेक्ट हम धो देते हैं, तो वो गलत होता है। हमें थोड़ा सा, आधा घंटे पहले, हम अगर टाइम ज़्यादा नहीं निकल पा रहा है तो थोड़ी सी हमें ऑयलिंग कर लेनी चाहिए, ताकि जब वॉश कर रहे हैं तो नेचुरल ऑयल बालों का नहीं जाएगा।
1: बिल्कुल। चमकदार जो बाल हैं सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आएंगे, अच्छी सेहत भी इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अच्छा खान पीन खाएं।
0: बिल्कुल। बार बार स्ट्रेटनर, कलर और
1: ये
0: हेयर
1: आजकल
0: ड्रायर का
1: बहुत
0: इस्तेमाल
1: ज़्यादा ट्रेंड में है। बिल्कुल।
0: एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर जाते हैं, एक बार तो स्ट्रेटनिंग करके जाते हैं ना, तो बहुत अलग दिखाई देता है। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार तो ठीक है कर लिया, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से फिर क्या है, बाल डैमेज होने लगते हैं।
1: और इसलिए बालों को थोड़ी नेचुरल रहने दीजिए, क्योंकि असली खूबसूरती उनकी सेहत में ही होती है। याद रखिए, बाल सिर्फ स्टाइल नहीं है, आपके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: तो उनकी देखभाल भी उतने ही प्यार से कीजिए जितना आप खुद से करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ और खूबसूरत बाल अगर होंगे तो हर चेहरे की सबसे प्यारी मुस्कान वही बन जाएंगे।

0: नेहा, आजकल लोग बालों को अच्छा व चमकदार रखने के लिए हेयर स्पा करवाते हैं, लेकिन क्या घर में भी हेयर स्पा किया जा सकता है?
1: बिल्कुल किया जा सकता है। घर पर हेयर स्पा करना आसान भी है और किफ़ायती भी। सबसे पहले अपने बालों में नारियल, बादाम या जैतून के तेल से अच्छे से हल्की मालिश करें।
0: और उसके बाद में?
1: उसके बाद मालिश कर लें, उसके बाद में तौलिया गर्म पानी में भिगो कर निचोड़ लें और उसे 5 से 10 मिनट के लिए बालों में लपेट लें। इससे तेल जड़ों तक अच्छी तरह पहुंच जाएगा।
0: और इसका अगला स्टेप क्या होगा?
1: अगले स्टेप में इसके बाद दही, एलोवेरा और शहद, इसका हेयर मास्क बना लें और फिर बालों में लगाएं और लगभग 20 मिनट तक लगे रहने दें।
0: और फिर
1: फिर क्या म्यूजिक का आनंद लें क्योंकि
0: और
1: बीस
0: साथ
1: मिनट
0: में
1: वेट
0: चाय भी
1: बीस मिनट वेट जो कर रहे हैं तो थोड़ा सा म्यूजिक आप सुन सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें और बालों की लंबाई पर कंडीशनर लगा लें। हाँ, ये ध्यान रखें कि जड़ों में कंडीशनर नहीं लगाना है आपको, बालों की लंबाई पर अच्छे से लगाएं। इससे बाल मुलायम और चमकदार बने रहते हैं।
0: यानी थोड़ी सी देखभाल से घर पर है इस बार आसानी से किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, सप्ताह में एक बार हेयर स्पा करने से बालों को पोषण मिलता है और वे बहुत ही स्वस्थ बने रहते हैं।
0: तो सखियों, उम्मीद है घर पे किए जाने वाले ये आसान हेयर स्पा आपके बालों को स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बनाए रखने में मदद करेंगे। अपने बालों की देखभाल के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें और फिर आत्मविश्वास के साथ जुल्फों को खोलकर बाहर निकलें।

0: क्यों?
1: इसलिए कि शर्मा न जाए।
2: सखियों, फैशन की दुनिया में कपड़े, गहने और मेकअप जितने खास होते हैं उतने ही खास होते हैं हेयर स्टाइल्स। और बॉलीवुड ने हमें ऐसे कई हेयर स्टाइल दिए जो सिर्फ फैशन नहीं, एक दौर की पहचान बन गए।
3: बिल्कुल नेहा, कभी किसी हीरोइन की मुस्कान लोगों का दिल जीत लेती थी तो कभी उसकी जुल्फें ट्रेंड बन जाती थी। और मजेदार बात यह है कि कुछ हेयर स्टाइल तो हीरोइनों के नाम से मशहूर हो गए, है ना?
2: सबसे पहले बात करते हैं साधना कट की। साधना कट के बारे में तो सबने सुना है। 60 के दशक में अभिनेत्री साधना ने जब माथे पर आगे की छोटी फ्रिंज वाला हेयर कट स्टाइल रखा था ना, तो लड़कियों के बीच उसकी ऐसी दीवानगी हुई कि हर ब्यूटी पार्लर में बस एक ही डिमांड होती थी, हमें साधना कट चाहिए।
3: हाँ, और फिर आया वो दौर जब घुंघराले बालों और बड़ी बड़ी लटों का जादू चला। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के खुले बाल, बाउंसी और लेड हेयर स्टाइल ने 90 के दशक में लड़कियों को नया फैशन दे दिया। और फिल्मों में उनकी हर अदा के साथ उनकी बालों की लहर भी लोगों के दिलों में छा गई थी, है ना?
2: बिल्कुल। सिर्फ साधना और माधुरी ही नहीं, जीनत अमान का स्ट्रेट खुले बालों का स्टाइल, शर्मिला टैगोर का पफ हेयर स्टाइल और श्रीदेवी के सिल्की लंबे बाल, ये भी एक दौर के फैशन में स्टेटमेंट बन गए थे।
3: कहते हैं ना कि फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं दिखाती, वो लोगों की जिंदगी, सोच और फैशन भी बदल देती है। और बॉलीवुड की हीरोइनों की जो ये हेयर स्टाइल है ना, आज भी लोगों की यादों और फैशन के ट्रेंड्स में जिंदा है।
2: तो सखियों, आपको कौन सा बॉलीवुड हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद है? साधना कट, माधुरी स्टाइल या फिर कोई और?

0: सखियों, बाल सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं बढ़ाते, ये यादों के धागों से रिश्तों को सजाते हैं। कभी बिखर जाए तो एक कहानी बन जाते हैं, और कभी संवर जाए तो जिंदगी की निशानी बन जाते हैं। माँ की उंगलियों से संवरे वो बाल आज भी बचपन की सबसे खूबसूरत याद बन जाते हैं।
1: कभी ये बिखर जाएं तो मन की उलझनें दिखाई देती हैं, कभी सवर जाएं तो आत्मविश्वास झलक उठता है। राधा की चोटी में प्रेम की छवि दिखाई देती है, कृष्ण की शरारतों में अपनापन, और माँ के सफ़ेद होते बालों में त्याग और अनुभव की पूरी दास्तां। सच तो ये है कि बाल केवल सौंदर्य का नहीं, भावनाओं, रिश्तों और जीवन के अनगिनत रंगों का भी प्रतीक है।
0: इन लटों में छुपी होते हैं बीते कल की बातें, हंसी के कुछ पल और अनगिनत मुलाकातें। हर एक लहर में कोई अपना सा एहसास रहता है, दिल के सबसे करीब हमेशा वही साथ रहता है। वक्त बदल जाए, उम्र की राहें मुड़ जाए, फिर भी कुछ यादें इन जुल्फों में ठहर जाए। आईने में जब कभी गुजरे दिनों की झलक मिलती है तो जिंदगी फिर से एक खूबसूरत गजल सी लगती है।

0: सखियों, जुल्फों की बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम का वक्त कब होल चला।
1: आज किसी की यादों में बचपन का मासूम चेहरा था, तो किसी की बातों में किसी की उड़ती हुई जुल्फों का जादू।
0: सच, बाल सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को नहीं बढ़ाते, ये यादों को भी और खूबसूरत बना देते हैं।
1: तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि जब लहरा कर खुलती है किसी की जुल्फें, तो मौसम भी थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आपसे लेते हैं विदा।
0: कंट्रोल रूम से गजेंद्र सिंह जालसू, HPT से VS भाटी राय सिंह राव, आज के कार्यक्रम में कंसोल पर उंगलियां थिरकाते हुए आपको प्यारे प्यारे गीत सुनाए पद्मेरी बहुरानी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष

0: विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण हैं। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी,
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
5: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में

0: आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह

0: में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिंट आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

प्रस्तुत है फिल्म सौदागर का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लोकप्रिय जोड़ी ने। इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म साजन से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में मेरा दिल भी कितना पागल है। गीतकार समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी आपने सुना गोपी किशन फिल्म का ये गीत ये इश्क है क्या? आवाजें थी कुमार शानू अलका याग्निक की, संगीत दिया आनंद मिलन ने, गीतकार थे समीर।

आप सुन रहे हैं जान फिल्म का ये गीत हम ऐसे करेंगे प्यार। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए सभा में सबसे पहले सुने युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आखिरकार वो शाम आ ही गई जिसका इंतजार पूरे हफ्ते रहता है। ये है सैटरडे इवनिंग, जहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई अलार्म नहीं, बस आप, मैं और ढेर सारी बातें। तो तैयार हो जाइए एक शानदार शाम के लिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक आपकी मुस्कुराहट की जिम्मेदारी हमारी।
1: तो सैटरडे इवनिंग में आप जुड़ चुके हमारे साथ आपके अपने रेडियो कार्यक्रम युव वाणी में, जहां आज का एक कार्यक्रम लेकर आए हम दोनों रेडियो बड़ीज, यानी कि मैं स्वस्ति और आज मेरे साथ है।
0: तो दोस्तों, मैं हूं आयुषी। तो दोस्तों, आपकी मुस्कुराहट की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आप भी छोड़ दीजिए हफ्ते भर की थकान को और चलिए हमारे साथ उस सफर पर जहां बातें होगी दिल की, मुलाकात होगी यादों से और साथ ही होंगे बहुत सारे म्यूजिकल सॉन्ग्स। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं हमारी प्लेलिस्ट का ये पहला म्यूजिकल सॉन्ग।

0: स्पेशल बनाती है।
1: जैसे देर तक सोना, दोस्तों से मिलना, या फिर बिना किसी वजह के अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनना।
0: तो जल्दी छोड़ दीजिए अपने पूरे हफ्ते की वो टेंशन
1: और जुड़ जाइए हमारी इस वीकेंड वाइब में। वैसे वीकेंड वाइब से याद आया स्वस्ति की, तुम्हारे इस बार वीकेंड का यानी कल संडे का क्या प्लान?
0: देखो अगर आज की बात करें, आज तो मैं दोस्तों से जुड़ गई हूँ, हमारे रेडियो बड़ी से सारे। और कल की बात करें ना, कल दिन भर मैं सुबह अपने सारे काम निपटाने वाली हूँ और शाम को IPL फाइनल्स है वो देखने वाली हूँ।
1: अरे वाह, यानी कि तुम क्रिकेट लवर्स का तो एकदम सेट है, IPL देखने वाले हो। लेकिन जो क्रिकेट नहीं देखना चाहते तो वो क्या करेंगे पता है? जैसे कि मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी और अपना पूरा ऐसे टाइम टेबल बनाऊंगी कि इसके टाइम पर मुझे ये काम करना है, और सारे काम निपटा करके अपना जो मंडे है उसकी फ्रेश स्टार्ट करूंगी। फिलहाल मुझे याद आ रहा है कि देखते हैं हमारी प्ले लिस्ट का जो अगला सॉन्ग है वो कौन सा है।

0: कहते हैं कि हम मंडे से फ्राइडे तक ना हम सिर्फ कैलेंडर देखते रहते हैं कि कब दिन खत्म होगा, कब ये अगला दिन आएगा। जैसे ही वीकेंड आता है ना, ऐसा लगता है हम घड़ी देखना ही भूल गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि वीकेंड का मतलब ही है कि नो अलार्म नो हरी ओनली चिल।
0: करेक्ट है, ये तो एकदम रिलैक्स एकदम मजे में रहने का। वैसे आयुषी, वीकेंड ना दो तरह के लोग होते हैं वीकेंड पर, एक जो सुबह जल्दी उठते हैं और पूरा दिन प्लान करते हैं,
1: और दूसरे वो जो दोपहर में उठकर कहते हैं अरे आधा वीकेंड तो निकल गया।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आप कौन सी टीम में, अर्ली बर्ड्स जो जल्दी उठते हैं या एकदम वीकेंड पर सोने वाले वीकेंड स्लीपर्स?
1: हाँ, लेकिन ये भी कि अगर आप अभी चाय कॉफी या अपनी पसंदीदा स्नैक्स के साथ में आराम कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपकी शाम और भी खास होने वाली है।
0: क्योंकि आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीजों की जो वीकेंड को ना और ज्यादा खास और

0: बातें तो हम एक के बाद एक करते ही जा रहे हैं, लेकिन उसी के बीच आज, जिसके आपको बिल्कुल उम्मीद शायद ना हो, लेकिन हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आए हैं, है ना। तो स्वस्ति, हमारे लिसनर्स को फटाफट से बता दो कि आज का जो हमारा सरप्राइज है वो क्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका जो सरप्राइज है ना, या सेगमेंट है, वो थोड़ा खास है, थोड़ा अलग है, क्योंकि सरप्राइज है कहानी जिसकी शायद आपने उम्मीद नहीं की होगी। तो चलिए फिर देर नहीं करते और आप सबको सुनवाते हैं हमारी
0: लेकिन
1: कहानी।
0: लेकिन लेकिन स्वस्ति, ये तो बताया नहीं कि कहानी का नाम क्या है, शीर्षक क्या है।
1: कहानी का नाम है आम का पेड़।
2: कहानी, पुराना पेड़। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे जब हम बच्चे थे तब भी ये इतना ही बड़ा था। उस पेड़ के नीचे हर शाम चहल पहल रहती थी। कोई ताश खेलता, कोई गप्पे मारता, कोई थक कर उसकी छांव में बैठ जाता। समय बीतता गया, गांव के बच्चे बड़े हो गए, कुछ शहर चले गए और कुछ विदेश। धीरे धीरे पेड़ के नीचे की भीड़ कम होने लगी। अब वहां पहले जैसी हंसी नहीं गूंजती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि सड़क चौड़ी करने के लिए उस पेड़ को काटा जाएगा। लोगों ने सुना, 2 मिनट अफसोस जताया और फिर अपने अपने काम में लग गए। लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी को ये बात बेचैन कर गई। अगले दिन वो सुबह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। लोगों ने पूछा, बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा मुस्कुराए, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। लोग हंस दिए, लेकिन बाबा रोज आने लगे, कभी पेड़ से बातें करते, कभी उसकी जड़ों को छूते। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने पूछा, दादाजी आपको इस पेड़ से इतना लगाव क्यों है? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जब मैं छोटा था मेरे पिता मुझे यही बैठा कर कहानियां सुनाते थे। जब पहली बार स्कूल गया तो डर लग रहा था, इसी पेड़ के नीचे बैठ कर रोया था। जब मेरी माँ चली गई तब सारी रात यहीं बैठा रहता था। जब मेरी शादी हुई तो बारात भी यहीं से निकली थी, और जब मेरा बेटा शहर चला गया तब भी मैं यहीं बैठा था। बच्चे चुप हो गए। बाबा ने पेड़ की तरफ देखा और कहा, तुम्हें एक पेड़ दिखता है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी दिखती है। कुछ दिन बाद मशीनें आ गई और पेड़ काट दिया गया। उस दिन पहली बार पूरे गांव ने महसूस किया कि सिर्फ एक पेड़ नहीं गिरा, उनकी यादों का एक हिस्सा भी चला गया। सालों बाद वहां एक चौड़ी सड़क बन गई, गाड़ियां तेजी से गुजरने लगी, लेकिन गांव के लोग जब भी उस जगह से निकलते उनकी नजर वहीं चली जाती, उसी पेड़ की ओर। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, वे हमारी यादों का घर होती है, और जब वे चली जाती है तो हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ उन्हें नहीं खोते, हम अपने भीतर का एक हिस्सा भी खो देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पुराना पेड़। दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? मुझे लगता है कि हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जिंदगी में अगर कोई पुरानी जगह, कोई पुराना पेड़, कोई पुराना घर या कोई पुरानी याद अभी भी आपके पास है तो कभी उसके पास बैठिएगा, हो सकता है वहां आपको अपनी ही कहानी मिल जाए।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने एक कहानी सुनी जिसका नाम था आम का पेड़। ये कहानी ना सिर्फ एक इस कहानी में जो पेड़ है वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो हमारी यादों का घर था। जिंदगी में हम अक्सर मंजिलों के पीछे भागते भागते उन लोगों और उन जगहों पर उन पलों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें खुशियाँ दी थी। लेकिन सच तो ये है कि हम सबसे कीमती चीज़ें वो नहीं होती जो हमारे पास आज है, बल्कि वो होती है जिन्होंने हमें कभी मुस्कुराना सिखाया था।
1: आम का पेड़ ना सिर्फ पेड़ नहीं था, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें ये सिखाया कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपनी जड़ों को ना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत याद ना हमेशा वही रहती है जहाँ उसका दिल पहली बार खुश हुआ था।
0: तो दोस्तों, आखिर में यही कि फल देने वाले पेड़ और बिना मतलब साथ देने वाले लोग जब तक साथ होते हैं उनकी कीमत समझ नहीं आती, और जब चले जाते हैं तब उनकी कमी समझ आती है। तो

दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई आम का पेड़ है, कोई इंसान, कोई जगह या कोई याद, तो उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें दोबारा नहीं मिलती।

0: दिन की तरह आज भी हम हाजिर हैं आज का वर्ड ऑफ द डे लेकर के, है ना। तो स्वस्ति फटाफट से हमारे दोस्तों को बता दो कि आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है।
1: आयुषी, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है ना, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा रेयर।

0: है, लेकिन उसका जो मतलब है ना वो दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि वर्ड है सेरेंडिपिटी।
1: अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या होगा?
0: सेरेंडिपिटी का मतलब होता है जब कोई अच्छी और खूबसूरत चीज ना बिना प्लान के और अचानक से हो जाए, यानी आपने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी उस चीज की, और वो मोमेंट ना एकदम परफेक्ट निकल के आए, या वो चीज आपकी लाइफ में हो जाए।
1: अच्छा, तो मतलब ये तो वैसा ही हो गया ना बिल्कुल, कि आप कैजुअली किसी सॉन्ग को स्किप करने वाले होते हो, लेकिन अचानक से आपको वही पसंद आ जाता है। आप किसी रैंडम दिन बाहर निकलते हो और किसी पुराने दोस्त से टकरा जाते हो, या फिर आप कहीं यूं ही बाहर निकले, तेज सी धूप है और अचानक मौसम एकदम बदलने लगा और तेज सी बारिश होने लगी और मौसम एकदम सुहाना हो गया। तो ये सारे जो मोमेंट है, होना कुछ था लेकिन ये हो कुछ और गए, तो क्या ये सेरेंडिपिटी में आएंगे?
0: बिल्कुल, इन्हीं मोमेंट्स को कहते हैं ना जो अचानक होते हैं, उसी को कहते हैं सेरेंडिपिटी।
1: तो दोस्तों, अब हमने भी ये वर्ड सीख लिया है, आपने भी सीख लिया है, तो जरूर ये आप कहीं अपने सेंटेंस में यूज जरूर लेना। उससे क्या होगा ना, आपको ये जो वर्ड है ये आपको याद रहेगा।
0: लेकिन हमारे दोस्तों ने भी उम्मीद नहीं की होगी हम ये गाना सुनवाने वाले हैं उनको, और सुनाते हैं हम ये गाना।

0: का फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ हम जुड़े हुए हैं दोनों, यानी कि मैं स्वस्ति और आज मेरे साथ है
1: और मैं आयुषी।
0: आज का दिन ना आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, थोड़ा खास है, क्योंकि आज एक और बोनस डे यानी एक और सरप्राइज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। इतने मजेदार गाने चल रहे वीकेंड के, आपने कहानी सुनी और बोनस ये है कि एक और फिर कहानी आ चुकी है।
1: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम कहानी लेकर के आ गए हैं जिसका शीर्षक है नाम वाली किताब। अब हर किताब का नाम होता है, लेकिन ये कैसा शीर्षक है नाम वाली किताब, अब ये तो आपको भी तभी पता चलेगा ना जब आप सुनेंगे। तो चलिए फिर सुनते हैं साथ में कहानी नाम वाली किताब। कहानी नाम वाली किताब। पुराने शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी थी, इतनी पुरानी कि वहाँ की किताबों से भी पुराने किस्से निकलते थे। लोग आते, किताबें लेते, पढ़ते और वापस कर जाते, लेकिन लाइब्रेरियन की नजर एक बात पर हमेशा जाती थी। एक किताब थी जिसे हर साल सिर्फ एक बार कोई ना कोई आकर जरूर इशू कराता था। अजीब बात ये थी कि किताब बहुत साधारण थी, ना कोई मशहूर उपन्यास, ना कोई दुर्लभ किताब, फिर भी हर साल उसी तारीख पर कोई उसे लेने आता। लाइब्रेरियन को उत्सुकता हुई। एक साल उसने उस किताब को खोला, पहले पन्ने पर बस एक नाम लिखा था, उसके नीचे एक तारीख, बस और कुछ नहीं। अगले साल फिर वही हुआ, कोई आया, किताब ले गया, कुछ दिन बाद वापस कर गया। इस बार लाइब्रेरियन ने चुपके से किताब खोली, उस नाम के नीचे एक और नाम जुड़ गया था और एक नई तारीख। अब उसे और हैरानी हुई। धीरे धीरे साल बीतते गए, हर साल एक नया नाम जुड़ता गया, कोई टिप्पणी नहीं, कोई संदेश नहीं, बस नाम और तारीख। कई साल बाद लाइब्रेरियन बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने तय किया कि अब वो इस राज का पता लगाएगा। उसने रिकॉर्ड खंगाले, पुरानी फाइलें देखी और तब उसे एक कहानी मिली। बहुत साल पहले एक लड़का और एक लड़की उस लाइब्रेरी में पढ़ने आया करते थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी खुलकर बात नहीं करते थे। एक किताब थी जो दोनों अक्सर पढ़ते थे। एक दिन लड़के ने उस किताब के पहले पन्ने पर अपना नाम लिख दिया। सोचा अगर कभी वो लड़की ये किताब खोलेगी तो समझ जाएगी कि वो यहाँ था। कुछ दिन बाद लड़की ने किताब खोली, नाम देखा, कुछ नहीं लिखा, बस उसके नीचे अपना नाम लिख दिया। उस दिन से दोनों की एक अजीब कहानी शुरू हुई। वे कभी चिट्ठियां नहीं लिखते थे, कभी बातें नहीं करते थे, बस हर साल उसी दिन लाइब्रेरी आते, किताब खोलते और अपने नाम के नीचे एक नई तारीख लिख देते, जैसे कह रहे हो मैं आज भी तुम्हें याद करता हूँ। फिर एक दिन लड़की शहर छोड़कर चली गई। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगले साल किताब में एक नई तारीख फिर जुड़ी, लड़के के नाम के नीचे और उसके नीचे लड़की के नाम के नीचे भी। सालों तक ऐसा चलता रहा, कभी दोनों मिले नहीं, कभी बात नहीं हुई, लेकिन किताब में तारीखें बढ़ती रही। फिर एक साल सिर्फ एक नाम जुड़ा, दूसरा नहीं, अगले साल भी, फिर अगले साल भी। लाइब्रेरियन समझ गया शायद अब उनमें से कोई एक नहीं रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद एक छोटी बच्ची लाइब्रेरी आई, उसने वही

किताब मांगी। लाइब्रेरियन ने पूछा, तुम्हें इस किताब के बारे में कैसे पता? बच्ची मुस्कुराई और बोली, मेरी नानी ने कहा था हर साल इस किताब में एक तारीख लिखाना। लाइब्रेरियन की आंखें भर आई, उसने किताब खोली। बच्ची ने आखिरी नाम के नीचे एक नई तारीख लिखी और बहुत छोटे अक्षरों में एक वाक्य भी, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। वे लोगों से निकलकर यादों में रहने लगती है। और उस दिन लाइब्रेरियन ने पहली बार महसूस किया कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को इतने साल बाद भी उसी सम्मान, उसी गर्माहट और उसी खामोशी से याद करना। तो दोस्तों, ये थी कहानी नाम वाली किताब। दोस्तों याद रखना, हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती, लेकिन कुछ मोहब्बतें इतनी खूबसूरत होती है कि उन्हें मंजिल की जरूरत ही नहीं पड़ती।

0: कुछ देर पहले ही आपने सुनी कहानी नाम वाली किताब। दोस्तों, इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है, ये नहीं थी कि दो लोग एक दूसरे को चाहते थे, बल्कि ये थी कि उन्होंने अपने एहसासों को समय, दूरी और परिस्थितियों से बड़ा नहीं बनने दिया।
1: आज की दुनिया में ना रिश्ते अक्सर इस बात से तय होते हैं कि सामने वाला हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन ये कहानी सिखाती है कि किसी की इज्जत करना, उसकी याद को संजो कर रखना और उसके लिए दिल से अच्छी भावना बनाए रखना भी प्यार का असली रूप है।
0: तो दोस्तों,
1: कभी कभी ना हर कहानी का अंत साथ रहने में नहीं होता है। कुछ कहानियां हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची भावनाएं समय के साथ ना फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और गहरी होती जाती है।
0: लेकिन दोस्तों, आखिर में अगर हम देखें कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, तो ये शायद ये हो सकता है, मेरे अनुसार आपके अनुसार कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये हो सकता है कि हर मोहब्बत को पाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ मोहब्बतें सिर्फ दिल को खूबसूरत बनाने के लिए ही होती हैं। किताब में लिखे हुए नाम मिट सकते हैं, लेकिन दिल में लिखे हुए नाम अक्सर उम्र भर साथ चलते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की नहीं, सिर्फ यादों की ज़रूरत होती है, और महज यादों के ज़रिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं।

0: दोस्तों, इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। पूरा देश जिस मुकाबले का इंतजार कर रहा था ना, वह कल होने जा रहा है। यानी कि आईपीएल 2026 का फाइनल अब बस एक दिन दूर है।
1: बिल्कुल स्वस्थी, पूरे सीजन में हमने शानदार बल्लेबाजी देखी, लास्ट बॉल तक चले मुकाबले देखे और ऐसे पल देखे जिन्होंने हमें टीवी स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका ही नहीं दिया।
0: लेकिन अब समय है उस आखिरी जंग का, जहां सिर्फ एक टीम ट्रॉफी उठाएगी और दूसरी टीम के हिस्से आएगा सीख, अनुभव और अगले सीजन के लिए उम्मीद है।
1: अरे यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है, यहाँ आखिरी गेंद तक कुछ भी तय नहीं होता। एक ओवर मैच बदल सकता है, एक विकेट पूरे स्टेडियम का माहौल बदल सकता है और एक खिलाड़ी इतिहास रच सकता है।
0: बिल्कुल, कल जब खिलाड़ी मैदान पे उतरेंगे ना, तो उनके साथ उतरेगी करोड़ों लोगों की उम्मीदें, सपने और विश्वास। हर चौके पर तालियां होंगी, हर विकेट पर जश्न होगा और हर पल दिलों की धड़कनें तेज होंगी।
1: और दोस्तों, चाहे आपकी पसंदीदा टीम कोई भी हो, याद रखिए कि खेल हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाता, बल्कि संघर्ष करना, धैर्य रखना और आखिरी पल तक उम्मीद बनाए रखना भी सिखाता है।
0: तो कल के इस महामुकाबले के लिए अपनी जर्सी तैयार रखिए दोस्तों और परिवार के साथ बैठ जाइए, क्योंकि कल का मुकाबला है RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस GT गुजरात टाइटंस के बीच।
1: और
0: तैयार हो जाइए IPL 2026 के नए चैंपियन का स्वागत करने के लिए इसी उत्साह, जोश और क्रिकेट के जुनून के साथ।
1: फिलहाल के लिए चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम के इस अगले म्यूजिकल सॉन्ग की ओर।

0: दोस्तों, हर खूबसूरत शाम की तरह आज की ये महफिल भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपका ये शनिवार, ये सैटरडे हमारे साथ बहुत ही खुशी से, हैप्पीली और मज़ेदार और अच्छी बातों से भरपूर रहा होगा।
1: याद रखिए, जिंदगी को परफेक्ट बनाने के लिए कोशिश मत कीजिए, उसे खुशी खुशी जीने की कोशिश कीजिए। एकदम दिल खोल के जिए, क्योंकि ना यादें परफेक्शन से नहीं बनती है, खुशनुमा पलों से बनती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब हम दोनों को दीजिए इजाजत। आज आपके साथ थी मैं, यानी कि स्वस्ति, और आज मेरे साथ है
0: और मैं आपकी दोस्त आयुषी। तो दोस्तों, आज हमने कहानी अभी सुनी, एक कहानी हमने सुनी थी जिसका शीर्षक था आम का पेड़, और दूसरा हमने सुनी थी नाम वाली किताब। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत, हम चलते हैं। लेकिन जाते जाते अब हम बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की, संयोजन था मनीष सोलंकी का।
1: आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए दिन, एक नए जोश और नई ऊर्जा और ढेर सारी प्यारी बातों के साथ। तब तक अपने वीकेंड को खुलकर एंजॉय कीजिए, अपने सपनों के साथ समय बिताइए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बढ़ते रहिए।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम की 6 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक

और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा

मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम बॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम विवरण में हम आपको बताते हैं हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी और अगले दिन की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए पहले सुने आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 9:30 पर राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती सुनिएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। इसी केंद्र से रिले किया जाएगा रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। चौपाल ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:00। 7:30 पर सुनिएगा सीमा डेरी गूंज। सुगम संगीत आपको सुनवाएंगे रात 9:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:00।

ये थी जानकारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की। और अब आपको बता दें कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

कल शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल, शाम 7:30 पर सीमा डेरी गूंज।

रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाता है। कल प्रातः 10:55 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनिएगा। हिंदी के तुरंत बाद मन की बात का संस्कृत अनुवाद भी प्रसारित किया जाएगा।

सुबह 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:00। श्री रामचरित मानस सुनना न भूलिएगा सुबह 6:00।

बजकर 5 मिनट पर। सुबह 6:15 बजे आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। चुनमुन बच्चों के लिए प्रसारित किया जाने वाला यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। कृषि जगत कार्यक्रम में कल चर्चा सुनिएगा, अनाज और बीजों का सुरक्षित भंडारण, इस विषय पर दिन में 1:05 पर। दिन में 1:15 बजे सुनिएगा महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी वाटिका। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे सुना जा सकता है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुबह 10:55 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात अवश्य सुनिएगा। हिंदी के तुरंत बाद मन की बात का संस्कृत अनुवाद भी प्रसारित किया जाएगा। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: समवेत स्वरों में ये देशगान अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। संस्कृत में समाचार अब सुनिएगा।
1: आदौ मुख्याः वार्ताः। कर्णाटके कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे विधायक दलस्य नेतुः चयनाय उपवेशनं प्रवर्तते। म्यांमारस्य राष्ट्रपतिः मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पञ्चदिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां सम्प्राप्तः। तेन महाबोधि मन्दिरस्य दर्शनं कृतम्। ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमण्डलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्रावट आगामिषु चतुर्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामन्त्री पीट हेक्सेथ इत्यसौ अवोचत् यत् यदि सन्धेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्य कार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटके कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे विधायक दलस्य नेतुः चयनाय उपवेशनं प्रवर्तते। निवर्तमान मुख्यमन्त्रिणः सिद्धारमैया वर्यस्य त्यागपत्रं राज्यपालेन थावरचन्द गहलोतेन पूर्वमेव स्वीकृतम्। उपवेशनस्य अनन्तरं अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी इत्यस्य सचिवः रणदीप सिंह सुरजेवाला वार्ताहरान् सम्बोधयिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् अस्मिन् उपवेशने डीके शिवकुमारः औपचारिकरूपेण विधायकदलस्य नेता चयनितो भविष्यति। इतः पूर्वम् अपि डीके शिवकुमारः राज्यपालम् अमिलत्। उपवेशनस्य अनन्तरं प्रशासनस्य रचनायै अपि सः राज्यपालाय प्रतिवेदनं दास्यति। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य नोएडायाः सूरजपुरस्थितस्य लोहम इति समवायस्य भ्रमणम् अकरोत्। अयम् समवायः महत्वपूर्ण खनिनाम् उन्नत सामग्रीणां च उत्पादनं विदधाति। अत्रावसरे श्री वैष्णवः अवोचत् यत् लिथियम बैटरी स्थायी चुम्बक इत्येतौ आधुनिक प्रौद्योगिक्यां महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः परिकल्पना वर्तते यत् एतेषां निर्माणं भारते स्यात्। एतेषां प्रौद्योगिक्यः विकासः स्वदेशस्तरे भवेत्। श्रीवैष्णवेन उक्तं यत् अस्याः परिकल्पनायाः अनुरूपं लौहम् नामकेन समवायेन सफलतापूर्वकं जटिल प्रौद्योगिकी विकसिता।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: म्यांमारस्य राष्ट्रपतिः मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पञ्चदिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां सम्प्राप्तः। तेन बोधगया स्थितस्य विश्वप्रसिद्धस्य महाबोधि मन्दिरस्य दर्शनं विहितम्। राष्ट्रपतिना तत्र बोधि वृक्षस्य अधः प्रार्थना अपि कृता। अत्रावसरे म्यांमारस्य राष्ट्रपतिना बकराऊर स्थिते ऐतिहासिके सुजाता मन्दिरे शिरं नत्वा बोधगया स्थितस्य बर्मी मठस्य यात्रा कृता। राष्ट्रपतिना सह वरिष्ठाधिकारिणः बौद्ध प्रतिनिधयः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि अवर्तत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर

0: येन दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमण्डलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्राविट आगामिषु चतुष्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अरब सागरे बंगालखात्यां लक्षद्वीपे कन्याकुमार्यां च प्राविट अग्रे समेधते। ऋतु विज्ञान विभागेन केरलस्य अष्ट जनपदेषु अद्य प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं विधाय पीतवर्ण संचेतना प्रसारिता। ऋतोः प्रतिकूलता कारणेन जून मासस्य तृतीय दिनं यावत् मत्स्यजीविनः केरल लक्षद्वीप तटयोः समुद्रे उद्यमं न कुर्वन्तु इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी अवोचत् यत् भारतीय सशस्त्र बलानि उच्चस्तरीय सतर्कतायां विद्यन्ते। आवश्यकता विद्यते सति ऑपरेशन सिन्दूर 2.0 इति सिन्दूराभियानस्य द्वितीय चरणाय सन्नद्धानि सैन्यबलानि वर्तन्ते। पुणे नगरस्य खडकवासला स्थितायां राष्ट्रिय रक्षाकादम्यां स्नातकान् सार्धैकशततमस्य दलस्य पासिंग आउट परेड इति प्रयाणं सम्बोधयता जनरल द्विवेदिना उक्तं यत् सिन्दूराभियाने दृढसंकल्पेन प्रत्युत्तरप्रदानस्य क्षमता प्रदर्शिता। तेनोक्तं यत् एतत् अभियानम् इदानीम् अपि सन्ततं प्रवर्तते। जनरल उवेदी अवोचत् यत् सिन्दूराभियाने भारतीय सैन्यबलानां मध्ये तारतम्यम् अवलोकितम्। सममेव वयं भविष्यकालाय आत्मानं सन्नद्धं कुर्महे। सेनाप्रमुखेण स्नातकाः व्यावसायिक नेतृत्वस्य राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्च मानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् आकारिताः।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 34वां प्रभागः वर्तते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीय पटले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय वेबफलकं समेत्य न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। प्रमुखः रक्षाध्यक्षः जनरल अनिल चौहानः अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रिय समर स्मारके सैन्यत्रयेण प्रदत्तेन गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सैन्य सेवाभ्यः निवृत्तिं स्व्यकरोत्। अयं समारोहः देशस्य सर्वोच्च सैन्याधिकारी रूपेण तदीय विशिष्ट कार्यकालस्य समापनस्य प्रतीकः अवर्तत। समर स्मारके पुष्पाञ्जलिं समर्प्य जनरल चौहानेन उक्तं यत् सैन्यत्रयस्य गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सेवानिवृत्तिः तस्मै अत्यन्तं सम्मानप्रदं वर्तते। जनरल अनिल चौहानः गतशताब्दस्य 81वें वर्षे भारतीय सेनायां सेवाम् अवाप्य 40 वर्षेषु देशसेवायां महत्वपूर्ण पदेषु कार्यम् अकरोत्। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यः जनरल अनिल चौहानस्य स्थानं स्वीकरिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामंत्री पीट हेग्सेथ इत्यसौ अवोचत् यत् यदि संधेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्य कार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू अद्य सूचितवान् यत् प्रथमवारं भारतीय हज मिशन संस्थया हज समन्वयस्य संचारस्य च उत्कृष्टतायै सऊदी हज उमराह मन्त्रालययोः प्रतिष्ठितौ लाबाट्यूम पुरस्कारौ प्राप्तौ। सामाजिक संचार माध्यमेन श्री रिजिजू अकथयत् यत् 26,000 वर्षस्य हज यात्रायाः मुख्य चरणस्य सफलता अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालयस्य भारतीय हज समित्याः सऊदी अरब देशे भारतीय राजदूतस्य नेतृत्वे भारतीय हज मिशन इत्यस्य जेद्दाह नगरस्य महाव्यवस्थापकस्य च मध्ये अविच्छिन्न समन्वयं प्रतिबिम्बयति।

0: बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रिंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपान्त्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायां अद्य भारत इंग्लैण्ड दलयोः द्वितीया 20-20 स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा ब्रिस्टल नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं 7 स्पर्धा आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अब रिले किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आम जन के बीच की कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाना जाना चाहिए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मशीनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों के साथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और पारदर्शी तरीके से ही कराए जाते हैं। व्यास नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका

0: पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से जयपुर में शिविर लगाए जाएंगे। 3 दिन चलने वाले इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की किश्त स्वीकृति और वितरित की जाएगी। ये शिविर जयपुर नगर निगम और एक निजी बैंक के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता में भी नगरपालिका कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी, अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगरपालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में भी सभी की भागीदारी को आवश्यक बताया। महाधिवेशन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के डी रेगुलेशन फेज 1 के तहत किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9000 आवेदनों में से 6000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आवेदनों को मंजूर करने के मामले में राज्य में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा, जहां लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की घोषणा की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन तथा उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही जिले के एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। नागौर शहर के पास जो

0: जोधपुर बीकानेर मार्ग पर आज दोपहर एक कार और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। ये हादसा डुकोसी और राजुवास गांव के पास हुआ। दुर्घटना में कार में सवार दो महिलाओं और एक बच्चे सहित चारों की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रदेश में धूल भरी आंधी का दौर आज भी जारी रहा। सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में अचानक बदले मौसम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले अंधड़ की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से हुई, जिसके बाद इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक फैल गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
1: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल धराशायी हो गए। राजधानी जयपुर में भी शाम को बादल छाए रहे, बिजली कड़कने के साथ ही धूल भरी आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है। पिछले दो दिनों से जारी आंधी बारिश से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज करीब 30 जिलों के लिए आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के आसार जताए हैं। केंद्र ने आंधी और तेज हवाओं, बिजली चमकने के साथ लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आंधी बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का पहला चरण पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भवन का नवीनीकरण, प्रवेश और निकास मार्गों का पृथक्करण, नई पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग रूम का उन्नयन किया गया है। इस काम में लगभग 20 करोड़ रूपये की लागत आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी। सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खान कलर ने तैयार किया है। जालौर जिले को बीते महीने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जिले का दौरा कर आमजन के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जालौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाई। पंचेरी गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं का धरातल पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए आम जन से इनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे सफलता की कहानियों को सुना। उन्होंने गांव का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों के साथ चाय पीकर चर्चा की। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर

0: उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जीवाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर को दिल्ली से सीधा रेल सेवा से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही जिलेवासियों की मांग बीते दिनों पूरी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जालौर से होकर गुजरने वाली दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने जालौर पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस गाड़ी का जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में ठहराव होगा। रोजाना चलने वाली इस गाड़ी से जालौरवासी अब जयपुर और दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे। वहीं गुजरात के भरूच, अंजार और गांधीधाम तक भी सीधी पहुंच हो सकेगी। गाड़ी की शुरुआत होने से आमजन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान आदर्श अमृत सरोवर बागोड़ा पर श्रमदान रखा गया। जिला स्तरीय आयोजन में प्रभारी मंत्री के विश्नोई शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। अभियान के तहत जिले भर में रोजाना श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। हरियालो राजस्थान के तहत जिले में इस सीजन में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने ये जानकारी देते हुए आम जन से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री विश्नोई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बागोड़ा स्थित खेतलाजी तालाब पर पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी सिलसिले में बीते दिनों आहोर में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अभियान में पशुपालन विभाग की ओर से जिले की 308 गौशालाओं में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिले के भेटाला में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत तंबाकू और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जालौर जिले में मतदाताओं द्वारा स्वगणना पोर्टल पर जनगणना जानकारी दर्ज की गई। 1 से 15 मई तक चले स्वगणना अभियान के तहत अब जनगणना कर्मी लोगों के घर घर पहुंचकर सूचना अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही मकान पर नंबर लिखने का काम किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पिछले दिनों एक दिवसीय प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में 110 बेरोजगारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। जिले भर में इन दिनों सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी के तीखे तेवर बने रहने से आम जन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने से दिन के समय बाजार और सार्वजनिक स्थान सूने दिखाई दे रहे हैं। जालौर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

खास समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो, भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माय आज दूजा दिन धूलो उड़बा सागे आंधी चाली, सरहदी हलका माय रेत रात तूफान नो जिंदगी माथे असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि भारत री फौज आला दर्जा री सावचेती राख रही है और जरूर

0: मुख्यमंत्री विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प सांचो करण माए सगला री भागीदारी ने जरूरी बताई। कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्यरा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्राई मौजूद रहा। प्रदेश माए निवेश सारू राज निवेश पोर्टल माथे मिली 9000 अर्जियां मायों 6032 मंजूर कर ली रिजी है। अर्जियां मंजूर करन रकाम माए जयपुर प्रदेश माए अव्वल रहो जठे मिली करीब 2000 अर्जियां मायों 1332 ने मंजूरी दे रिजी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आ जानकारी दीनी। पुलिस मुख्यालय बेहतर काम करण वाला 123 अहलकारां और कर्मचारियां ने महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल ऊन नवाजन रो ऐलान किन्नो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री ओर निकाली जिया हुकम रे मुजब पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक ऊ सिपाही लेवल ताई रा अहलकारां और कर्मचारियां रो मान करियो जावेला। नवाजी जावन वाला अहलकारां माए पुलिस री सिखावन देवन रो काम देख रहा अतिरिक्त महानिदेशक HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह शामिल है। 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश माए नैरी नैरी ठोड़ा योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज सिरोही जिला रा एक विश्वविद्यालय माए योगाभ्यास रो कार्यक्रम राखी चियो। इन माए विद्यार्थी शिक्षक और जनता उमाऊ सागे भाग लीनो और योग ने रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री सोगन लीनी। नागौर कन जोधपुर बीकानेर गेला मथे आज दोपहर कार रे ट्रक री फेंट माए आ जावनो 4 जना री मौत वेगी। पुलिस रे मुजब डुकोसी और राजूवास गांव बीच व्या हादसा रे कारण कार माए सवार 2 महिलावां और 1 बच्चा समेत 4 जना री मौत वेगी। अरब मौसम प्रदेश रा पाकिस्तान री सरहद नु लाग्योड़ा और उत्तराद आतुणी हलका माए आज दोपहर री पोर जोरदार रेतीलो तूफान आयो। श्रीगंगानगर बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ और सीकर जिला माए आए जोरदार आंधियों दिन माए अंधारो महसूस वेवन लाग्यो। रेत रात तूफान री शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलाओं भी जो थोड़ी देर माए आरे सारे रा मोटा हल्का माए पसर गयो। माणा चूरू खबर नवीस बतायो कि रेत रात तूफान जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो।
1: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: कई ठोड़ा 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार उ बायरो बाजो जिणो धूला रो गुबार छा जावन रे कारण दूर ताई निजर नी आयो। ई दौरान लोगा ने दिन माए गाड़िया री लाइटा चासनी पड़ी। जोरदार बायरो बाजनो कई छोड़ा रूखड़ा टूट गया और होर्डिंग्स उखड़ गया और बिजली री पूर्ति माथे असर पड़ियो। राजधानी जयपुर माए सिंजानी पोर बादला मंडी गया, धूलो उड़ियो, आंधी चाली और कठे कठे बारिश हुई। आंधी बारिश पारो 10 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। मौसम केंद्र जयपुर प्रदेश माए आज करीब 30 जिला सारू आंधी बारिश सागे कठे कठे ओला पड़बार आसार चताया है। केंद्र आंधी चालन जोरदार बायरो बाजण और बिजली चमकण री बगत सावचेती राखण सारू कहो है। मौसम केंद्र रे मुजब आंधी बारिश रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवण री संभावना है। श्रीगंगानगर जिला रा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा काम रो पहलो दौर पूरो फेंक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत स्टेशन भवन ने बेहतर बनावण, स्टेशन माए दाखिल वेवण और बाहर जावण रा न्यारा न्यारा दरूजा बनावण, गाड़ियां उबी करण री नूवी व्यवस्था विकसित करण समेत कई खास काम करी जिया जा माथे करीब 20 करोड़ रूपया रो खर्चो आयो। इस आगे वठे करीब 10 करोड़ रूपया रा खर्चो 12 मीटर चौड़ो पैदल पुल बनायो जा रियो है और सूरज

0: रोशनियूं 50 किलोवाट बिजली पैदा करण री मशीनाई लगाई जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो, भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारिया ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माए आज दूजा दिन धूलो उड़बा सागे आंधी चाली, सरहदी हलका माए रेत रा तूफान जिंदगी माथे असर पड़ियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। किसान भाइयों के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाड़।

0: किरण जी, देखो कि टाइम है नी,
1: हाँ सर,
0: टाइम जावे टाइम रो ठाई नहीं पड़े यार, दिन महीना जका है निकलता जावे। अब देखो आज तारीख होगी 30,
1: बिल्कुल सर,
0: तो ओ महीनो जको है मई है जको गई,
1: गई सर।
0: और जून आए इन पाछे जुलाई में टाबरा री खड़बड़ हो जाए कि स्कूला खुल गई ने ड्रेसा रोन। और आजकल तो हम सरकारी स्कूल ही अप्रैल महीने अगली क्लास में बिठा दे। कुल मिलार सरकार वो प्रयास करियो है कि भाई प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल जो सिलेबस है वो भी एक सरीको रहे, वाणा जो तौर तरीका वे भी एक सरीका रहे, और शिक्षा रे मुजब जो आपानी ओळखाण है पूरी दुनिया में, और कहीं के पूरी दुनिया ने ये आपानी शिक्षा री सुगंध जो की है पहुंचनी चाहिए।
1: बिल्कुल साहब गुरविंदर जी, और देखो कि शिक्षा री आप बात करी तो शिक्षा देखता तक और छोटा टबरिया नहीं परेशानी देखता तक, गर्मी बहुत ज्यादा वेगी तो सरकार अब छुट्टियां भी बढ़ाए दिए, पहली 17 या 18 जून ने खुलन वाली, अब 28-29 जून जो है टाबरा री भी स्कूल खुले ला, तो अबार खूब तो लंबी है टाबरा री छुट्टियां, और साथे साथे अबार कई है जो जनगणना वालों काम है।
0: बिल्कुल, जनगणना रो भी काम चले, और बात शिक्षा री चली तो देखो भाई 140 करोड़ आबादी वालो वो देश है, और इन देश रे मायने आजादी रे बाद रा 75 साल है, तो आप जिन तरह विकास करियो है वो में शिक्षा रो बहुत योगदान है। शिक्षा ही धनरी जकी है, अगर कोई अशिक्षित है तो समझ लो कि वो गरीबी ने न्यूतो दियो है। भारत रा जका निम्न वर्ग रा लोग है, कमजोर वर्ग रा लोग है, निम्न मध्यम वर्गीय लोग है, वे 50 रे दशक में हो चाहे 60 रे दशक में हो चाहे 70 रे दशक में हो, कोई भी दशक रा जका निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्गीय माँ बाप है, वह दुख देखन आप रा छोरा ने छोरिया ने उच्च शिक्षा बढ़िया में बढ़िया पढ़ाई के भाई डॉक्टर बनो है कि इंजीनियर बनो है, जो भी वो कोर्स करनी चाहे उगेरे वास्ते वे सब कुछ दाव में लगाए। और आज वह स्थिति है कि चाहे किनी तरह रे आप देश रे महीने जावानी तो उठे आपने डाइस्प्रो मिले के भाई ओ इंडिया रो डाइस्प्रो है जो को बहुत तगड़ो है, लूठो है। अमरीका रे महीने लगभग देखा का 40 लाख प्रवासी जगह भारतीय है, और वे बटे रे अमरीका रे विकास में भी योगदान दे, सबों ज्यादा उठे टैक्स भी वे देवे, तो कठे न कठे शिक्षा जकी है आपने विश्व शक्ति बनावे, आज चीज आपने ये बैठनी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, लारला कुछ बरसा रे मायने शिक्षा रो जो माहौल है उनमें बहुत परिवर्तन आयो है। पहली ग्रामीण क्षेत्र रे मायने ये का कठी धारणा ही कि पढ़ाई लिखाई करन कहीं करी घर रोई काम कर ली, और खास कर यदि बालिका है तो इन्हें तो घर रोई काम करनो है, पढ़ लिखन कहीं न्याल कर देला, तो आज जो भावना अबे धीरे धीरे मैं देखी है कि आजकल जो है अभिभावक है इन चीज सु मतलब बदल रिया है, बालिका ने भी पढ़ा रिया है लिखा रिया, और बच्चा रे सारू और बालिका रे सारू भी अच्छी शिक्षा रो प्रावधान जो है वे कर रिया है, और उनो परिणाम अबे आपने सामी दीख भी रियो है।

0: जा बेटा बन।
1: किरण जी थे बात कई बदल लिया है, बदलाव रो जो कम कोई देखो के भाई फीते हूँ नाप तो आपा सका ने के भाई 10 साल पहला मीटर में आपा अटे हान आज अटे, लेकिन ये रो भी एक आंकड़ो है। अगर आपा आंकड़ा संग्रहित करा और वहाँ उन हिसाब ने समायोजित करा तो आपने आपनी विकास आपनी तरक्की आपना मतलब अच्छे बुरे रो एक तरह आईनो है कि जितना भी आंकड़ा संकलित हुए और खास तौर माते अगर आप देखा कि भाई जनगणना रो है तो वे घर में कितना सदस्य है कौन कितो पड़ियोड़ो है कहीं करे है वे रे आर्थिक स्थिति कहीं है वे घर रे महीने कहीं साधन है कहीं चीजा है। तो हर 10 साल बाद अगर इन तरह की कोई जनगणना हुए वे रो आपन ठा पड़े कि भाई आज 10 साल पहला आम भारतीय परिवार की स्थिति आ ही और आज आ है तो एक बहुत मोटो हिस्सो है आपनी प्रगति ने नापन रो एक तरह तरीको है।
2: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, आप प्रगति ने भी नाप सको और साथे साथे भविष्य में किन तरह री आपने जो है रणनीति तैयार करनी है, किन तरह री योजना वहां बनानी है, कौन सो वर्ग किन तरीका सो काम कर रियो है, लोगारो जीवन स्तर कैडो है, लोगारे शिक्षा रो स्तर कैडो है, प्रत्येक चीज रो जब डाटा अपने खने वे तो उन आधार माते जो है विकास री नीतियां भी तैयार करीजे। और अब जो है अपने जनगणना रो जो कार्यक्रम है वो शुरू वेगो है, जनगणना 2027 प्रथम चरण रे मायने जो प्रगणक है वे घर घर सर्वे रो काम कर रिया है और घर घर जाए आपने दस्तक देवेला मकान री गणना करेला और सूचीकरण करेला और खास करण जरूरी है कि जद ए लोग आप रे अटे आवे तो आपन जो आपनो फर्ज हो बने कि आप पूरी तरीका सु यानी जो है सहयोग करा।
1: बिल्कुल किरण जी, देखो ए जनगणना राज्य का सरकारी आवे नी कर्मचारी आप रे घरे तो वे आपरी सुख रे वास्ते आवे, आपरी सुविधा रे वास्ते आवे, आपरी उन्नति वास्ते आवे, इन वास्ते बाणी इज्जत करनो, बाने मान सम्मान बात करनी और बाने सही जान

0: जानकारी उपलब्ध करानी आपनो फर्ज है।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, 16 मई सु कार्यक्रम शुरू वेगो है, घर घर सर्वे रो काम चल रियो है और नजरी नक्शा जो तैयार करे उन्हें आधार मते अबे मकाना रो अंकन करेला और 34 प्रश्नरी एक जो प्रश्नावली है उन्हें माध्यम से जो है डाटा रो संकलन करेला और खास करना है कि भाई आप जब घरे आवे तो आप पूरी सटीक और सही जानकारी जो है आप उन्हें उपलब्ध कराओ। और एक चीज याद रखने वाली है, ध्यान रखने वाली है कि आजकल एड़ा लोग फर्जी भी बन ना सके, तो आप ध्यान रख जो कि यह जो प्रगणक है ये आपसे कोई आईडी नंबर फोटो हस्ताक्षर अंगूठारा निशान या ओटीपी नहीं मांगेला। एक 34 प्रश्नारी प्रश्नावली है जिनमें आप रहो मकान के अंदर कहीं कहीं सुविधा है और कितना मेंबर है, इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी लेला तो आपने वह जानकारी जो है सही ढंग से देनी है। और साथ साथ आप जो जानकारी है गोपनीय रखी जावेला, तो कोई भी तरह की भ्रामक सूचना या भ्रामक प्रभाव में आपने नहीं आना है।
0: भाई लोगा किरण जी कहो कि किनी तरह रो ओटीपी आपने नहीं देनो है, कठी अंगूठो नहीं लगाओ है, कठी आपने आईडी नहीं देनी है, न फोटो री जरूरत है, नहीं साइन री जरूरत है। ऐ तो भाई सरकारी कर्मचारी है जका सवाल पूछिए आप, और 34 प्रश्न है, 34 जका 34 क्वेश्चन है बार, अगर आप जवाब दे वे आप रे टिक मार कर ली तो ये रमाइने आई जाए कि आपरी पारिवारिक स्थिति केड़ी है, आज की जनगणना है, आप रे परिवार मुजब, आपरी शिक्षा मुजब, उन मुजब है। इन वास्ते आने साथे सहयोग करो और जका जितना भी बे सवाल पूछे बाणो जवाब जो को है वो ईमानदारी हुंदे। मान लो कोई पूछे कि भाई अट पहला कुन रहता कहीं रहता, ए जानकारी देनी हूं कहीं है कि आपनी ज फायदो होई।

0: बिल्कुल सा, कई बार आपने मन में वेम वेग देखो ये माणी कोई पर्सनल जानकारी नहीं निकाल ले, तो इन मुझे भी कई बार लोग जो है सही जानकारी नहीं दे, तो एड़ो काम आपने नहीं करना भाई लोग। वे जो प्रश्न है वे भी आम जानकारी रहा है, जिनसु की आपने जो डाटा है आंकड़ा है वे संकलित वेला, तो आपने उन प्रश्नारो सही जवाब देना बहुत जरूरी है।
1: किरण जी एक ये रिमाइंड और भी है कि भाई जो को भवन है या मकान है और कीरो है कौन हीरो मालिक है, आ जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, आरंभिक जानकारी
0: बिल्कुल
1: तो आ देओ तो उमे में आपने ही फायदो है
0: जो, तो इनमें आपने सहयोग करना। और साथ साथ गुरविंदर जी देखो कि सरकार जो है बड़ा है बुजुर्ग है छोटा बच्चा है बालिका है सबारे सारों अलग अलग तरह की जो है योजना टेम टेम माते निकाले।
1: किरण जी 140 करोड़ आबादी आलो और देश और इन देश री बढ़ती हुई जनसंख्या और उन जनसंख्या वास्ते जो को वन जीवन स्तर है वो ने सुचारू रूप चलाने वास्ते चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे गांव री सरकार हो, वह सब लोग प्रयास आ करे के भाई लोग जीवन जो को है वो होरो रहे तकलीफ जकी है वह कम आवे। अब देखो के लड़की री जमान ली बात करा तो पहली लेन ग्रेजुएशन तक सब शिक्षा री व्यवस्था है वह सरकार करे, और चाहे गांव रहा वो चाहे शहर रहा वो चाहे अनुसूचित जनजाति रहा वो या अनुसूचित जाति रहा वो पिछड़े वर्ग रहा हो चाहे केड़ा भी हो, अगर आप होना रहो तो आपने बराबर आगे बढ़न रो मौको सरकार उपलब्ध करावे। शायद आई जो वजह है कि इन पारदर्शिता री वजह ही आप आज दुनिया री चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बने। तो आज दुनिया रो मोटो जो को है ओ भाई युवा देश है, युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा तो हो सके आने वाले 20-30 साल बाद वृद्ध जो कल बूढ़ा लोग है वाणी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि आज जो को जवान है आने वाले टाइम में भाई बूढ़ो हुई, तो सरकार जवान रे वास्ते भी योजना चलावे, साथ ही साथ बुजुर्ग है जका बाने वास्ते भी कई कल्याणकारी योजना वार पेंशन रो व्यवस्था है जकी सरकार करी है।
0: बिल्कुल साहब गुरविंदर जी आप बुजुर्ग की बात करी तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना उन बुजुर्ग रे सारू है जो आर्थिक रूप कमजोर है, एड़ा वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर है रोजमर्रा जिंदगी ने आसान बनाउन सारू और मुफ्त सहायक उपकरण जो है देउंडे सारू आ योजना है, और इरो लाभ एड़ा बुजुर्गा ने मिलेला जियारी मासिक आय 15,000 रुपया सु कम वे, और इरे मायने जो बुजुर्ग देखन सुनन में चलन में दांत गिरन में चबाउन में परेशानी है उने वॉकिंग स्टिक है व्हील चेयर है श्रवण यंत्र है चश्मा आदि तरह जो उपकरण है वे मुफ्त प्राप्त कर सके। अब आपने जो उपकरण है कीकड़ लेना और कटु लेना इन सारो आपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो आप ऑफिस है वटे आपने क्षेत्र में जानो पड़ेला और या पचे आप जिला प्रशासन है उनसु आप संपर्क करो तो आप री जो है 15,000 तक जो है उपकरण इन्हें आपने सुविधा मिल सके।

0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधीन जकी बूढ़ा बुजुर्ग लोग है बाने वास्ते जका आवश्यक यंत्र तंत्र है बे उपलब्ध करावे। खास तौर माते देखो बूढ़ा पेर महीने चश्मे की जरूरत पड़े हुणो आपानी सुनाई जे जकी कम पड़ जाए तो उर वास्ते भी मशीन आवे। तो सरकार प्रयास करियो के भाई जितना भी बुजुर्ग है बाने वास्ते 15,000 रुपया उपकरण है जका मुफ्त उपलब्ध है। आपने खाली उन वेबसाइट माते जा या मंत्रालय जो कार्यालय है उठे जान आवेदन करनो है। ईयर महीने किरण जी बीपीएल परिवार में आने वाला तो सब बूढ़ा बुजुर्ग आवे उगे अलावा जकरी मासिक आय 15,000 रुपये कम है। मान लो कोई 5-10 हजार कमावे कटी कॉन्ट्रेक्ट सर्विस करे तो वो भी आप रो आय रो प्रमाण पत्र लगा और आप रे घर परिवार है वृद्ध वास्ते जकी कांदरी मशीन है चश्मो है दांत वारो सेट है या स्टिक वे जकी हाथ में पकड़े कई अड़ी जकी आवश्यक सामग्री है
1: बिल्कुल
0: जका बाने उपलब्ध करवा सके।
1: बिल्कुल सा गुरुविंदर जी। और अब घड़ी रिकानी देखो।
0: देखो अत ही गणी उगीन कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर विश्नोई
1: और किरण ने दिराओसी
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: चार पगड़ा घना आवे दिन फिरता फिर मारे हैं सारे घोगाल कर दी हमारे ठंड की ठा पड़े को नहीं खुली राग हम बैठा रहो कर ला ठीक रही बात करे
1: जी हो
0: पड़े मैं आवरी
1: बजियो
0: तो हाल तपत कम हुई कोनी हजी को भाई कौन मेरी याद भाई
1: राम राम साहब
0: राम राम ओळखी कोनी भाई
1: अबे ओळखी
0: ओ ठीक ठीक ठीक ठीक हम ओळखी
1: केम छो
0: ओ ठीक नीलम भाई ठीक भाई चबा पानी
1: पाऊं
0: थोड़ो मीठो मुंडो करूं सरबतरी लायो मैं नींबू लाया लायो लाल मंगया हम पड़िया जो हूँ हैं दिन बैठ बैठो है जो घोट रखू कोई आवे जावे भाई देखो
1: मनवार बत्ती
0: मनवार बत्ती क्योंकि हमें हियाड़े में तो हूँ मारे हिसाब हूँ है मनवार करूँ उन्हाड़े मारे मन
1: सही बात है
0: क्या नहीं क्या देखो मिनका जू है तो मिन का जून में क्या है भाई देखो जड़ो बाजे भाई लो बैठ लीजिए हमें तावड़ो पड़े तो ठंडी चीज खाओ है जो पियो हियाड़े में उन्नी चीज खाओ क्या नहीं उन्ना जिमो ऊंडा हो
1: सही बात
0: है बराड़े में आप रे हिसाब रहो पर हुड़ा पार रहा दिन है भाई देखे जंद्र के जान हूँ आज गियो भेगो देखो खेत रे फेरो दिन आयो बैठा नहीं के दो तीन फिड़ा हाँ फिड़ा में है जी को डंडा ही है जी मैं तोड़ दिया है बैठिया ठोक ठोक
1: अच्छा
0: और मैं देखो की कोनी मैं देखो धरती माता है क्या नहीं हक है ना रही है
1: सही बात है
0: क्या इनिया रही हक है खिर गया रही है रोजना रही है अपर रही है अपर तो कौन पट्टो बड़े रो बारो तो भाई देखो बिने पटेरा बे है जो सारू मेर कटे फिर सके
1: सही
0: ठीक है नी कुदरता ने है जो मोटा पट्टा दिया पर आ है भाई तावलो खड़ो लागो नीलम नहीं तो ठाडे ठाडे जान आ जाओ नहीं तो एक बार हमें खबर घनी आवे फलन टोड़ मत उगोन फलन टोड़ मत उगोन इतना जिना है जो कह नी के बेहोश हो गान मैं पानी पिए कोनी मत ढकन रखे कोनी और आप मन मर्जी है जो क्या भूता

0: कोई आवे नी तो मोटी बात है की भाई खबर नवीस है ऐ आपरी खपत करे ऐ है जो कह नी इकबाल कह जो काडे देखो के फिर फिर खबर लावे
1: हाँ सा विनु याद आयो आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस हाँ सा भारत रो जो को पहलो अखबार हो हिंदी रे मायने वो आज रे दिन यानी कि 30 मई 1826 रे प्रकाशित हुई
0: हो देश आजाद नहीं हुए दिन
1: पहला
0: क्या देखो भाई के आई मोटी क्या सेवा ही
1: हाँ सर
0: और क्या कि भाई आज बढ़िया पढ़िया अखबार पढ़ता लोगों ने हुना होता
1: हाँ
0: क्या भाई कटे जुलम हो रही है कटे अत्याचार हो रही है कौन आजादी का दीवाना है कौन है जो कह नहीं कि आज वो कोई टाइम कम को होनी और उन टाइम रा मिन घेंगे एक होया और कह नहीं कोई बली खासम खास हाथ भाई होया आम आदमी हुयो जब जान अंग्रेज तू गया सा समझा नी क्या भाई देखो ये पूरे एक मुद्दे माते पूरो देश एक हो गो क्या हमें मैं गुलामी शहर नहीं करा समझा नी जब आज आजाद होया तो कह नहीं भाई देखो करोड़ों करोड़ों मिन्न खा देखो आपने कही है कि भाई के भाई आप जुल्म अत्याचार सहन कर लिया और देश आजाद कर लिया वो तो कह नहीं मालिक ने ठा है क्या भगवान ने ठा है कि कर है जो कहीं खबर ही की कर बे है जो को कह नहीं कि भाई घर बार छोड़ दिया जेड़ा में गया और भूखा तिरा रिया और गोलियां खाई और कटी क्या रहा क्या नहीं फांसी रे फंदे चढ़िया तो एड़ा बिरला मिनका ने भाई तो देखे पर्वत पर्वत पर धोक दू कोटि कोटि नमन करूं और मंदड़े रा फूल चढ़ाऊं एक गीत रो हूं थाने हुनो नीलम भाई वो थे हुनो के भाई किकर है जो कह मिनक ने हाथ रे मार्ग मारता हलनो सही जे नुनु कह हाथ ने आज नहीं है ठीक है नी तो हुनो फज
1: हां सा हुनो हुनो
2: भटकते देखे हैं लाखों मुल्ला

0: या तो बात है क्या देखो धर्म मजहब है जिसको आप ठोड़े
1: हाँ सा
0: पर क्या नहीं के भाई कोई की नहीं है जो बड़ा वैली बा बात मोटी वे
1: मोटी वे
0: देखो भाई एक काम करो नी भाई है जिसको नीलम
1: हाँ सा
0: ए मार कोई सब्जियां मंगेड़ी है जिको ए भरियुड़ी पड़ी है इनमें क्या नहीं क्या इन्हें कहो क्या
1: ए आलू री वो बोरिया कहीं मंगाई दी थी
0: आलू हूँ ना वो तो आलू है जो कोई है गया जो मैं क्या भाई एक आलू है जो कटो
1: कटो कहीं आज पूरी बोरी जे
0: हाँ बोरी है तो की कौन पड़ी है आलू कोई खराब थोड़ी
1: हाँ तो थोड़ा मन गाल दी जो लेती जाऊँ
0: हाँ ले जी चुकी कौन थे तो निजी राज जो क्या है जिको मार क्या हूँ तो की मुतबल कोनी अब मोल लाए भी चीज है तो यूं दे दे भाई
1: हाँ तो कहीं वे हो तो खराब वे ही नहीं
0: हाँ खराब हो मारे है जी को सी हम पढ़िया हम ही हवा में अन खराब हो जी अरे भाई मारे ढाणी एक बार है जी को देखो लड़न लड़न कभी आना जाना कम बेच भाई मारे हर एक चीज बुत राखन करे खैर की कौन भाई सब्जियां है पड़ी है टोकरी में
1: हाँ सा
0: ए थोड़ी कहीं है हावल कोई है जो गब लियो आलू कर में थोड़ा क्या जी को लपेट पानी छाटो दे मेल दो
1: रख दे
0: तो है जी को बात आए कि भाई
1: खराब नहीं बैठन
0: दे यूं है जी मने आलू का
1: ऊपर भावे
0: पसंद घना है
1: हाँ
0: क्या जी नैना नैना बोट परा बढ़िया तीखी मिर्चा नैक हूँ आलू जी मुँह कह जले मारे एक दम जी हो गरो सूर मैं घी गाँव खाऊं नहीं कह मने एक दम आनंद आवे क्या भाई ये क्या
1: कड़ी बात करी मैंने भूख लगन डूगी अबे
0: पहला बिगत बार हुना हूँ
1: यूं
0: हाँ मन कहूँ है कि
1: हाँ
0: कुण जलमिया कुण फोत होया पच है जो बड़ा कोई बात हो जो बता दीजो पहला है हुना
1: आज जन्मदिन है सा वी नारायण स्वामी रो आज रे दिन 1947 रानो जन्म वियो हो ए राजनीतिज्ञ हा और पुदुचेरी रे मायने मुख्यमंत्री भी रियोड़ा
0: ओ ठीक ठीक ठीक क्या नहीं उगुण है उठे है जो क्या नहीं का आप राजकाज हमारियो
1: हमारियो हो
0: और क्या नहीं मिनका सेवा करी तो कटे क्या नहीं सेवा करी एली नहीं जा ए भाई
1: जन्मदिन री
0: हाँ तो भाई देखा भगवान आने हाजत हजरा के जन्मदिन री बधाई
1: हाँ सर
0: ठीक ठीक है बड़े
1: देबू चौधरी आज रे दिन यानी कि 30 मई 1935 रानो जन्म वियो हो ए भारतीय सितार वादक हा और शिक्षक हा इन्हें अलावा पचाने पद्मश्री और पद्म भूषण भी सम्मानित
0: सितार बजे भाई
1: हाँ
0: तो कह नहीं क्या भाई अदाकार फनकार कलाकार नहीं बे आप रो काम जोर रो कर जाया करे अरे बंगाल रहा
1: हाँ सा
0: उठी ने है जी को बाजा

0: रावता और बंगाल में घर घर में है जो क्या नहीं सुनीत है
1: ऐसा
0: नाने मन डेरा फूल चढ़ावा कोटी कोटी नमन करा न भले
1: भले हमें एक गाना हुनाऊ
0: गानो काड़ो हुनाऊ कौ
1: गाना ओ आलू आलू री बोरिया देख ली जना मैं आलू माते याद आयो आलू
0: सब्जी मा सब्जी माती गाना ओ हो क्यों गा जी हां यू क्यों मन घर बैठा ने
1: लो तो हुनो पछे हुनो
0: हां
1: हाची में
0: हां तो हुना
1: हां सा ओ देखो
0: हुना
1: ओ देखो

हाय हाय कहीं चल दी वो तो करके झगड़ा। ओ मेरी माँ अब हाल मेरा सुनकर।

0: भोजन करावे।
1: और गुरु अर्जुन देव जी है जो आप टाइम में सौ का काम करिया, तो आज याने कोई नहीं भूल सके, आने है जो कोटि कोटि नमन है।
0: हर
1: मंदिरेरा फूल से डो बड़े
0: देव गोड़ा जवारे गोड़ा। ए कन्नड़ लेखक हा सा और शोधकर्ता भी हा, विद्वान शिक्षाविद भी हा।
1: हाँ गुणी विद्वान हा, कर्नाटक में होया भाई।
0: हाँ
1: और कह दी आपने क्या मातृभाषा में और बोली भाषा में जी कोई लिखियो करियो, तो मैंने कहा है जी को ज्ञान लियो ही है।
0: हाँ सर।
1: तो आनी कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन है मंदरेरा फूल चढ़ावा।
0: हाँ
1: और हमें भाई मारे ज्ञान रो कोई उजास करता हुआ थारो मन वे।
0: हाँ सर।
1: तो एक कोई हजीसी होना दो तो मारो जीव हो रो जाए।

0: भाई नील में वहाँ नियाल कर दिया मैं जो आलू थारे उनसे जरा ले लो।
1: हाँ सर।
0: दूजोड़ी सब्जी तुम थोड़ी है थोड़े मिर्चड़िया ले जान कोई भिंडी पड़ी गोभी पड़ी
1: गोभी, हाँ।
0: ले जाओ की कोई मारे पड़ी खराब हो गया
1: खराब
0: इन बीचे तो क्या नहीं कोई रहे काम आए तो मारी क्या नहीं खुशी मिली मैंने।
1: अच्छी बात है।
0: तुझी बात है भाई देखो हमें थे रसोड़े में पधारो थोड़ो तपड़ो तो है ही है और क्या नहीं की भाई हमें क्या पेट ने क्या काया ने भाड़ू
1: देना पड़े
0: और बढ़िया है जो थारे मन चाहो तो फापरिया बना लो थारा मन चाहो तो होगरा बना लो थारो मन चाहो जी को बना लो न है जो कह नहीं के भाई जिमनिया तैयार कर दो और बेलू कर ले हूँ थोड़ी फेर लू माला थे उठी ने है जो रसोड़े में तैयारी करो जी तो हूँ थोड़ो कह नहीं माला रो गिड़को फेर लू और पच है जो कह नहीं के भाई देखो भाई क्या तारा ही खासा ऊंचा आएगा है अंदर भी पड़गो है और प्रोग्राम रो टाइम ही वह है पूरो तो भाई सेना हमें लेवा ही
1: राम राम, राम।

ग्रामीण भाइयों ने अभी सुना कार्यक्रम सिमाडेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ये गीत था मैंने प्यार किया है इस फिल्म से। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। देव कोहली का गीत था राम लक्ष्मण का संगीत। फिल्म संगीत का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पत्थर के फूल फिल्म से। आवाज़ें एक बार फिर लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की है। गीत लिखा है नूर कसकर ने।

सागर फिल्म से। आइए अब आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, आरडी बर्मन का संगीत।

गीता फिल्म सागर से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज थी। जावेद अख्तर की बोल, आरडी बर्मन का संगीत था। समीर का लिखा ये नगमा नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में एसपी बाला सुब्रमण्यम ने गाया है। फिल्म का नाम है साजन।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। समीर का लिखा है ये नगमा अब आपको सुनवा रहे हैं। तर्ज आनंद मिलिंद की है, आवाजें लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की। फिल्म का नाम है वंश।

ये फिल्म संगीत अगला गीत आपको सुनवा रही हैं दयावान फिल्म से, पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, अजीज कैसी का लिखा ये नगमा सुनिए। संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

फिल्म संगीत में आइए, अगला गीत आपको सुनवाते हैं हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म से हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें हैं, महबूब का लिखा नगमा।

आइए अब सुने खुदा गवाह फिल्म से ये नगमा। मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

खुदा गवाह, इस फिल्म के इस दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये अंक अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉ सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहां पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से

0: 30 लाख होगी. कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव. और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया.
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया. श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है.
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए. आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला. लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है।

0: AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने सुगम संगीत।

सुगम संगीत में ये रचना एक बार फिर जगजीत सिंह की आवाज में। संगीत जगजीत सिंह का है, कलाम नजीर बाकरी का।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी से बोल रहे हैं। राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब रिले किया जाएगा।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब, इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्यामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहां तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं। 1974-75 का जो आंदोलन है

0: तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई। एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं न कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी की 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहां निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहां का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहां अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहां का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता

0: देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ड्राइविंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी आसानी से श्वेता ने ये कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है। क्या वाकई ये

0: इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
0: अच्छा
1: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कंटेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रूपये थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10 हजार से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10 हजार फॉलोअर्स थे, वो 10 हजार भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत इसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो।
1: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोज देख रहे हैं, वो एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
0: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। जैसे फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
0: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स।
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कॉन्टेंट देखते हैं तो हर एक कॉन्टेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कॉन्टेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपर गामिनी।
3: हाँ। उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
1: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर

0: कि बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहां तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला। और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना, सही में बहुत डाइवर्स है।
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो मेन्ट्री
0: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती हैं, लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
2: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है, वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 8 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूं, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड,
2: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
0: कॉम्पैक्ट रखो।
2: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
0: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी वो बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
2: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट, अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
1: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो

0: जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
0: जी
1: तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें तो?
1: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा पत्रिका। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब सुनिएगा।
1: वो किसानी में तराशा गया स्वर है।
2: अ टॉप ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मुकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब

0: of the rich tradition of classical singing. Her voice has been beautifully nurtured under the guidance of legendary gurus, including Pandit Ajay Fohankar.
1: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
0: She has graced prestigious music festivals like the Tansen Samaro and Ustad Amir Khan Samaro, leaving an indelible mark with her singing from the Prayag Mahakumbh to the Nehru Center in London.
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
0: Honored with several accolades, including the Kalashri and Mohammad Rafi awards, her performances are not only technically flawless but also deeply reflect the soul of Indian classical music.
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
0: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल है साजन बिन सुनी एरी आली और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिसनिंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।
2: श्रोताओं भी आपने सुना
3: अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 11 बजने को हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: दाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कांवरिया भगवान सदाशिव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब की बार हमारी खाली झोली भर दो, अगले बरस हम फिर कांवर लेकर आएंगे। ये उच्चारते हुए भाव विभोर भक्तों की भीड़ प्रभु दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है।